0: भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर, चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो। अब शाइन डबल विद इन बजट, लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
2: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
3: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन कमिंग सून।
4: अजी सुनते हो?
5: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
6: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: भूख लगी
12: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
13: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
12: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
14: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
15: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
12: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
15: इतना सब और प्राइस?
12: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
16: मैं ही।
17: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया? कभी पॉलिसी समझ भी आया?
16: नहीं आया।
17: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
6: Visit www.sanadainc.com today.
18: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye, to luxurious sky tower aur रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्डर टू गेम।
19: हाउ आर यू गाइस, फ्राइडे शाम है, ऐसे मत बोलो कि ओके, यू हैव टू से वाओ, फ्राइडे है तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा हूं या अच्छी हूं। That is the day when you can say शाम को मेरे शो पर आने के बाद कि आपने स्ट्रेच कर दिया है ये शाम, क्योंकि स्ट्रेच से याद आया जब वीकेंड सिर्फ सैटरडे संडे का हो और आप फ्राइडे की मिलावट कर देना उस पर, तो वो वीकेंड थोड़ा लंबा हो जाता है, विच बिकम द स्ट्रेच वीकेंड। और फ्राइडे को तो आप आधी रात सुबह तक पार्टी कर सकते हैं, फिर भी वीकेंड नहीं आया। एब्सोल्यूटली, इसको वीकेंड का स्ट्रेच कहते हैं, च्युइंगम की तरह हम करते हैं। और मैं जब आ जाती हूँ ना ये शाम को, एंड ड्रॉप दीज ब्रांड न्यू सॉन्ग्स दैट हैव हैपेंड और हर कुछ, बस अभी थोड़ी देर में आई विल बी ड्रॉपिंग ऑल द टेम्परेचर्स, डोंट लुक गुड, बट एनीवेज दिस सॉन्ग लुक्स अमेजिंग माय बंदूज।
20: हाय, इट्स आइकॉनिक।
21: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, काहे को पंगा लेने गए, छोड़ दे, आजकल जनता ना बहुत पिक्चरस हो गई।
22: इमेजिन
19: हम ये डायलॉग कितने बार सुन चुके हैं, गाना सुने चलिए।

0: Yes! We killed it!
1: आगे ले गया? ट्रोल हो जाएंगे?
2: Yeah.
1: Not at all.
0: डीनू, डाल दे.

मोहब्बत से ही क्रांति आती है यार। ये जिंदगी में मोहब्बत बहुत जरूरी होना, विदाउट मोहब्बत लाइफ इज नथिंग, यू नो। लाइफ और ह्यूमैनिटी जो है मोहब्बत से ही बनी है, नहीं तो हम मशीन से हो जाए ना। कुछ तो अलग रखे, ये जो रोबोट आने वाले हैं हमारी दुनिया में, उससे अलग हमें बनाएगा हमारा दिल, हमारा प्यार, और उसी से आएगी हमारी क्रांति। ओह माय गॉड, बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन वेदर के बारे में क्या बोलूँ। मोस्टली क्लियर है रात भर, आज रात 102 degrees। रियली ये डिग्रियाँ इतनी सारी लेके जो गर्मी बैठी है ना, बहुत पढ़ी लिखी है फॉर श्योर। कल है शनिवार, पार्टली क्लाउडी है, बट 106 फील्स लाइक, तो पूछे मत, आपकी फीलिंग आपकी है, मेरी अब मेरी, बट 106 इज एक्चुअल टेम्परेचर, लो इज 81, तो 80s में आते से गर्मी है, तो 106, ओ वाओ। संडे इज संडे अगेन, लेकिन नहीं, पार्टली क्लाउडी है, सन थोड़े से छुप रहे हैं, पर 107 degrees टेम्परेचर रहने वाला है, विद 84 लो में हाई है। शुरुआत ऑफ द वीक मंडे 24th of August, 107 high, 83 low, एंड द एंटायर वीक लाइक इवन ट्यूजडे इज 107 high, 83 low, मजदार द वीक वेडनेसडे इज 103 high and 81 low, थम्स अप थर्सडे 102 high, 79 low, एंड फन फिल्मी फ्राइडे, जब मैं वापस आ जाती हूँ धमाल करने के लिए, थोड़ा सा टेम्परेचर को तो नीचे ले आया है, 103 high and 79 low. So yes, feel better than this Friday, which is today, with an 82 low and 102 high. Next week when I come on Friday, again, the high is 103, which is higher, but 79 low. So ye haal hai is hafte ka, garmi hai yaro, kuch bhi kar le, bas garmi hai yaro. Okay, so take care, be cool, and dimag ko zyada thanda rakhiyega, okay? टेम्परेचर को रहने दीजिए, हावी मत हो।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।
2: सुनते रहिए फनेशिया रेडियो 104.9 FM, और ये जो आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन है सुबह शाम दिन रात रोजाना हर हफ्ते, बस इसी वजह से है क्योंकि आप हमें प्यार करते हैं और हम आपको। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद सुनने के लिए। एंड दिस इज योर होस्ट नवनीता, ये 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
4: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
5: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
6: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प?

0: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है.
1: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25+ dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
3: जिंदगी एक रंगमंच है
0: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
4: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
4: ये क्या होता
5: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.

सुपर डुपर दोस्तों, पता है जो हमारा वक्त है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन डॉक्टर्स का वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में. दैट डजंट हैपन बिकॉज आते हैं हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इट इज़ ईदर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, बट एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज आप इम्पॉर्टेंट है और इन डॉक्टर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. That is the importance. Because at Passion Health, you're not just a patient, you're family. For you, for your family, and for health, for our community, Passion Health Primary Care is here. And they give you 30 minutes all the time, and it takes to complete your annual physical. Anxiety care, fibroscan, alcohol-related liver concerns, vitamin B12, deficiency testing, and more. All are available at Passion Health. Schedule your appointment today. Phone uthaiye, number dabaiye, 2146666559. I'm sorry, 2146666259. Aur book kar lijiye apna important, because Passion Health Primary Care, your health is our passion. That is what they say every time. Sunte rahiye 104.9 FM, Fun Asia Radio. Aaj ye jo 5 se 8 straight from the heart lekar aayi hoon. अपना शो. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, क्योंकि सबको यही मन होता है बोलने का. फ्राइडे की फ्राइडे.

आप ये जो मेरा हीरो गाना गाना था सुन रहे थे और मैं हूँ आपकी होस्ट नवनीता। ये जो 5-7 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है, PMJ Jewels इज नाउ इन फ्रिस्को ब्रिंगिंग ओवर 60 इयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप। एक्सप्लोर स्टनिंग गोल्ड डायमंड्स एंड ब्राइडल कलेक्शंस फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइलस्टोन। प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा Gatamaneni, PMJ is a name trusted by generations. Visit PMJ Jewels Frisco on Main Street and discover jewelry that tells you story. वैसे खास तो ये ही रहता है कि जब हम घूमे फिरे कुछ भी करें याद आती है वो बातें, जैसे कुछ यादें जो किताबों में रखे फूलों जैसी होती है, सूख जाती है मगर महकती रहती है।

तो उल्फत सॉन्ग वो जमाने का है जब टू स्टेज आया था, अर्जुन कपूर एंड आलिया भट्ट, एक नॉर्थ से एक साउथ से, एंड देन होता है मिलाप. दैट इज हाउ द डिफरेंस ऑफ कल्चर्स कम टुगेदर. तो सर सोनू निगम आ रहे हैं, उनका रेवोल्यूशन, सोनू निगम रेवोल्यूशन. गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटफुल नाइट ऑफ म्यूजिक. द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट होने वाला है. आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ये रेवोल्यूशन सैटरडे सितंबर 26 को 8:30 एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. आपके बहुत ही प्यारे फेवरेट सॉन्ग्स होंगे, दैट आइकॉनिक वॉइस ऑल अलाइव. और मैं सोनू निगम को शो देखी हुई हूँ. Completely, he involves all of us, जो audience होते हैं, and such an amazing performer. Tickets available है Ticketmaster में. Information के लिए 855-360-SHOWS आप call कर लीजिए. Revolution Sonu Nigam Live, exclusive media partner, of course, that is nobody but us, Fun Asia.

104.9 FM फनीजा रेडियो। दोस्तों पता है, एक कुछ बात मैंने पढ़ी थी जो मेरे साथ रह गई कि हम ना बहुत कुछ समय बिता देते हैं अपने लाइव्स वेटिंग फॉर द बिग मोमेंट्स। वो प्रमोशन मिल जाए, वो वकेशन, शादी, बड़ा घर, नया घर, बिग सेलिब्रेशन। बट लोग जब व्हेन दे लुक बैक, जैसे आप भी, आपका हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ्स आर वेरी ऑफन यू रिमेंबर कम्प्लीटली ऑर्डिनरी मोमेंट्स, लाइक चाय विद समवन यू लव, लाफिंग इन द किचन, अ सॉन्ग प्लेइंग इन द कार, सिटिंग अराउंड डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग। कितने बार होता है कि जब आप मम्मी से मिलते हो तो वो एक छोटी सी बात, अभी आई वॉज टॉकिंग टू वैशाली और उनकी मॉम आई हुई हैं, और वो ऊंदियों बनाई थी खाने पर, बहुत यम्मी ऊंदियों, और मैं उस दिन वैशाली से मिलने उनके घर गई हुई थी एंड आई हैड दैट ऊंदियों, एंड उनकी मॉम वो मुझे ऊंदियों पर याद कर रहे थे, और आज जब मुझे बताया तो इट इज़ सच अ स्मॉल थिंग, बट वही याद जब वापस ऊंदियों बना तो याद वापस से आ जाती है। मे बी हैप्पीनेस डजंट ऑलवेज अराइव विद बैकग्राउंड म्यूजिक एंड फायरवर्क, समटाइम्स वो क्वाइटली आती है और हमें पता भी नहीं, बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं और बड़ा का वेट कर रहे होते हैं, तो कैसे आए वो बड़ी बड़ी बातें, वो कुछ मेमोरीज नहीं होती है, वह यही था, नॉट अ बिग डील, सीरियसली सीरियसली सीरियसली।

0: ब्यूटिफुल, बिफोर आई वाइंड अप गाइस, वक्त हो चुका है जाने का मेरा आज के फ्राइडे इवनिंग में. लाइफ डजंट ऑलवेज अनाउंस इट्स ब्यूटिफुल मोमेंट्स. देयर इज नो वार्निंग सेइंग पे अटेंशन, दिस विल बिकम अ मेमोरी. कोई बताने वाला नहीं है ये. समटाइम्स इट्स जस्ट अ लाफ, अ ड्राइव होम, योर फेवरेट सॉन्ग, डिनर विद फैमिली, और अ कम्प्लीटली ऑर्डिनरी फ्राइडे इवनिंग. तो इसी वजह से डोंट वेट फॉर लाइफ टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिफोर यू एन्जॉय इट. कभी कभी जो पल बिल्कुल ऑर्डिनरी लगते हैं वही कल की सबसे खूबसूरत याद बन जाती है. सो लिव इट, फील इट, एंड होल्ड योर पीपल अ लिटल मोर क्लोज. अंटिल नेक्स्ट टाइम, मुलाकात होगी अगले फ्राइडे 5 से 8 स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट ऑन थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. कीप स्माइलिंग, कीप लविंग, कीप द म्यूजिक प्लेइंग, बिकॉज ब्यूटी इज इन द स्मॉलेस्ट थिंग्स. हम जो बड़ी बड़ी खुशियाँ कहीं खोजने जाते हैं ना, वहाँ नहीं है. कम बैक, कम बैक. गुड नाइट, स्लीप टाइट, गेट अप हैप्पी, फ्रेश एंड ब्राइट, विशिंग यू अ फ्लावरफुल मॉर्निंग, अ कलरफुल मून, अ जॉयफुल इवनिंग एंड अ पीसफुल नाइट. एंड आई नो इट्स गोइंग टू बी अ फैबुलस डे फॉर यू टुमारो. स्टार्टेड विद अ कप ऑफ पॉजिटिविटी एंड सी, यू विल ओनली अट्रैक्ट पॉजिटिविटी. मिलते रहूँगी मैं हर हफ्ते, बट कल चलिए आप आ जाइए वो ओपन हाउस जो होने वाला है 2722 बर्नेली कोर्ट में. अमेजिंग होम, डोंट मिस इट. चाओ, सी यू, यू टेक केयर, बाय बाय.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे.
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट, फ्रिस्को.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: होचो,
9: होको,
8: होचो,
9: होको,
8: होचो,
9: इट्स होको.
6: अरे बस भी करो यार.
9: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
6: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
10: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
6: फ्लोर्स क्लीन
11: चेक,
6: विंडोज क्लीन
11: चेक,
6: किचन क्लीन
11: चेक,
6: एयर डक्ट्स क्लीन.
11: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
12: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
13: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
14: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
1: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
15: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार,
8: खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
15: क्या मतलब?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
15: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
17: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
18: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
10: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
19: तुमसे मिलके दिल का है।
18: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
10: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

नमस्कार एंड वेलकम बैक टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो। मैं आरजे स्वाति आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ डैलस, और आपको कहना चाहती हूँ कि डैलस आज आपकी संध्या की मंगल बेला हो मंगलमय। आज की डे है फ्राइडे एंड डेट है 21st ऑफ अगस्त, यानी कि बता रही हूँ आपको कि देखते देखते इस साल 2026 का 8वां महीना भी गुजरने को है डैलस। एंड इस वक्त 8:09 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी पर, और मैं आपको कह रही हूँ कि आइए डैलस कुछ अच्छा सुनते हैं नहीं सिर्फ हम कुछ अच्छा शेयर भी करते हैं, यानी कि अच्छे गाने तो मैं शेयर करूंगी और आप अच्छी वाइब शेयर कीजिएगा, क्योंकि शो का नाम है नो फिल्टर फ्राइडे। कोई प्रकार का कोई फिल्टर नहीं होगा एंड आपको दूंगी फ्राइडे वाइब, और वाइब जब मैं देती हूँ ना डैलस तो उसमें बचते हैं वाइब वाले ही गाने जो आपके अंदर आपके मन के अंदर कोई तरंग छेड़ जाते हैं जिससे आपको होने लगता है धीरे धीरे प्यार, और जब प्यार होता है तो फिर आप उसमें डूब जाना पसंद करते हैं। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिससे पता नहीं कौन ऐसा इंसान होगा जिसको म्यूजिक से प्यार नहीं होगा। तो प्यार एंजॉय कीजिए। मैं अभी गई और अभी वापस आई।

से शादी। इन दोनों का तो वीकेंड का फ्राइडे वाइब का मूड सेट है और ये चाहते हैं कि शादी कर लें। और वैसे जो शादी नहीं करते हैं वो लोग शादी नहीं होने की वजह से परेशान होते हैं, और जो शादी कर लेते हैं वो शादी हो जाने की वजह से परेशान होते हैं। ये चीज़ ही ऐसी होती है यार, सेम किस्सा है। आप किसी को प्यार कर लो, प्यार नहीं मिला करके आप दुखी हो, अगर आपके पास कोई हमदम नहीं है, कोई साथी नहीं है। जब कोई हमदम कोई साथी है तो उसके मिल जाने का दुख है कि ये क्यों है मेरी लाइफ में। तो कुल मिला के ना लाइफ में कोई सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन आपको बता दो कि ये फिल्म ना सिर्फ शादी के ऊपर थी, ये फिल्म थी गुस्से के ऊपर भी, कि जब सलमान को गुस्सा आता था तो फिर अक्षय कुमारत की शरारत शुरू हो जाती थी प्रियंका चोपड़ा को मिलकर। और फिर उसके बाद इस पूरी फिल्म का सार और समरी ये निकल के आता है कि गुस्से से कोई चीज़ अगर की जाती है तो वो केवल और केवल नुकसान कराती है। और हमको अगर कोई चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए इस वक्त, तो मुझे लगता है गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। ये फिल्म बताने की कोशिश करी, और जो मेरा निजी एक्सपीरियंस है वो है इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि जब इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस पे कंट्रोल ना होना तो ज़िंदगी हम जी नहीं रहे होते, सिर्फ काट रहे होते हैं। इतनी खूबसूरत सी जिंदगी मिली है यार, जीने के लिए, काटने के लिए नहीं। बट क्या करोगे जब एक्सपेक्टेशंस और इमोशंस की मार झेलनी पड़ती है, तो लगता है ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कट रही है।

What a wonderful and mesmerizing song. मैं जब भी इस गाने को सुनती हूँ, इस गाने की ना मतलब मुझे इस गाने से मोहब्बत सी हो जाती है यार. फिल्म का नाम आप देख लो कि गैंगस्टर, सॉरी वो लम्हे, एंड देन सॉरी फिल्म का नाम गैंगस्टर ही था. एंड उसमें एक गैंगस्टर की लव स्टोरी दिखाई गई है. कुछ गाने ना लाउड नहीं होते लेकिन सीधे दिल तक पहुंचने का रास्ता ज़रूर जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके की लिरिक्स लिखी जाती है, जिस तरीके का म्यूज़िक दिया जाता है, उसके बाद ये जो गाने होते हैं ना वो केवल कानों तक ही नहीं रह जाते, कानों से होते हुए दिल तक उतर जाते हैं. एंड के की वॉइस की खासियत ही यही थी कि वो गाने से दिलों को और आत्मा जो आपकी होती ना, अंतरात्मा, उसको छू लेते थे. आज हम हमारे बीच में नहीं है एंड अनफॉर्चुनेटली हम उनके कोई नए गाने एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने जितने गाने गाए हैं, जैसे तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, आह, मतलब इस वक्त वो गाना सूट नहीं करेगा वरना मैं तो वो गाना भी चला देती. लेकिन हम एंजॉय कर रहे हैं फ्राइडे वाइब, और उस वाइब के दौरान हम किसी भी तरह से किसी भी स्लो सॉन्ग को बर्दाश्त नहीं कर सकते. इसीलिए हमें करना पड़ेगा कुछ ऐसा गाना जो आपको वापस से मंत्रमुग्ध कर दे और अपनी अलग दुनिया में ले जाने के लिए मजबूर कर दे. देखिए ये गाना आप सुनेंगे, आपका रोम रोम खेल उठेगा. एंड अगर ऐसा हो जाए तो 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. आई मीन कॉल तो आप कर ही सकते हैं और बता तो आप सकते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ.

0: खेद।
1: यार मॉडर्न मंगल सूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
2: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगल सूत्र।
1: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
2: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
3: फाइंड द मंगल सूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगल सूत्र। कैरेट लेन, नाउ ओपन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
4: तारा वो तारा हर तारा।
5: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
6: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
7: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
6: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
7: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
6: इंडिया तक।
7: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
5: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
8: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can

0: you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
3: Calculating route, rerouting.
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
3: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
2: क्यों?
3: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
2: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
3: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
2: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
3: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
4: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनेशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
5: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.

हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो। मैं हूं आरजे स्वाति और हंसते मुस्कुराते हुए डैलस आपके ड्राइव टाइम पर दे रही हूं आपका साथ। यू नो व्हाट, कभी कभी कोई फिल्म आती है ना, तो वो फिल्म सिर्फ हिट या सुपर हिट नहीं हो जाती, उससे ना एक सुपर स्टार पैदा हो जाता है और फिर वो सुपर स्टार जिंदगी भर के लिए और शायद उस एक फिल्म की वजह से ताउम्र सुपरस्टार ही कहलाता है। वही है ऋतिक रोशन का ऑरा। जी हाँ, जब इस फिल्म में एंट्री ली थी, ओ माय गॉड, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर और यू नो एक्टिंग और स्माइल और डांस, इनके जैसा कोई था ही नहीं। अचानक से एक सीधे साधे ऋतिक रोशन को देखकर हर किसी को प्यार हो गया था, तो हो गया था ना एक सुपरस्टार पैदा। एंड फिल्म को आज भी देखो, हर बार फिल्म तरोताज़ा नज़र आती है एंड वही सेम फीलिंग, वही सेम वाइब और हर बार उसी सीधे साधे वाले जो फर्स्ट फेज के ऋतिक थे उससे प्यार हो जाने वाली फीलिंग आ जाती है।

incident can happen in seconds, but recovering from it can take much, much longer. If you have been involved in a car or a crash accident, truck accident or slip or fall incident, then attorney Umar Khwaja handle karenge aapka legal battle while you focus on your healing. He will fight for the compensation you entitled to, and you pay nothing unless your case is won. आज ही आप कॉल कर सकते हैं 4693005046 पर, या फिर विजिट कर सकते हैं attorneyumar.com फॉर योर फ्री कंसल्टेशन. वैसे तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो, लेकिन इन केस आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आप नाम ज़रूर याद रखिए, ताकि जो भी आपकी परेशानी है वो चुटकी में हो सके सॉल्व और आप फोकस कर सकें अपनी हीलिंग पर. ये फिल्म याद है डैलस? ओ माय गॉड, मुझे आज भी याद है कि मैं 12th में थी. फिल्म मूवी आई थी, सारे गाने सुपर हिट, और मेरी एक दीदी की शादी थी. उनकी शादी पे जो मज़ा आ रहा था वो एक तरफ, और गानों का जो खुमार था वो एक तरफ. ओ माय गॉड, आई एम सच इन लव विद दिस एरा.

जैलस आप कैसे भूल जाते हैं, जबकि मुझे याद रहता है कि हर फ्राइडे मुझे आपके साथ मिलना है और आपसे बातें करनी हैं। जी हाँ, इसीलिए मैं आ जाती हूँ फ्राइडे वाइब लेकर, लेकिन आप शायद भूल जाते हैं। यू नो व्हाट, रिश्ते जो होते हैं ना, वो हमेशा रोलर कोस्टर राइड की कसौटी पर तौले जाते हैं। जब इतना सुख दुख और काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देख लेने के बाद भी कोई रिश्ता, कोई प्रॉमिस जो आपने लाइफ में किया है किसी रिश्ते के लिए, वो आप निभाते रहते हैं निभाते रहते हैं, तो रिश्ता जो होता है और गहरा हो जाता है, और फिर आपको पता चलता है कि हाँ, ये रिश्ता था जो सच्चा था और ये हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। वरना क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और ऐसे रिश्ते होते हैं जो थोड़ा सा सुख दुख, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आने पर एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं और चले जाते हैं, है ना। तो इस फिल्म में भी ऐसा ही बताया गया है कि इतना सारा प्यार रहा है बिपाशा और डिनोमोरिया के बीच में, लेकिन कहाँ प्यार से चलते हुए किस स्थिति में पहुँच जाता है वो रिश्ता, लेकिन उसके बाद भी जब कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तब दोनों एक दूसरे के साथ खड़े मिलते हैं। यही है रिश्ते की कसौटी, और इसको जो पार कर जाता है उसका रिश्ता निहाल हो जाता है। आपको बता दूं कि अगर आपकी गाड़ी आज इस तरफ ना जा रही हो, लेकिन मन हो कि कुछ ऐसा मिल जाए, तो इसी तरफ लेकर जाइएगा। द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को इज नाउ सर्विंग इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे फीचरिंग माउथ वाटरिंग डिलीशियस डिशेज, एक्साइटिंग लाइव काउंटर शेफ्स, स्पेशल एंड fresh flavors that will keep you going back to back. Aap baar baar jaate rahenge. All this for just $24.99 per person. Enjoy the buffet on Saturday, Sunday from 12 p.m. to 3 p.m. Aaj कहीं और चले जाइए। कल और परसों आपको दो दिन 12 p.m. से 3 p.m. के बीच में बफे एंजॉय करना है सिर्फ $24.99 में। टेक योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड मेक योर वीकेंड डिलीशियस। फ्लेवर लाउंज लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड, 5855 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। जाइए, अच्छा खाना, अच्छी मेमोरीज ज़रूर ज़रूर बना लीजिए। लीजिए, एक गाना मेरे जहन में आया है कि इंडिया से आई हूँ, काफ़ी सारे इवेंट्स हुए उधर, और साड़ी पहनने का जो मज़ा इंडिया में आता है वो कहीं और नहीं आता, है ना। साड़ी कपाल आय हाय, बड़ा टफ होता है लगाना। मतलब मैंने कभी नहीं लगाया, लेकिन कभी एक्सपीरियंस किया है तो पता चला है कि आसान नहीं है कभी।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
5: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज थ्री में होना मेरी गारंटी है।
4: कैसे?
5: पेज थ्री ईटरी?
4: No, not another restaurant again.
5: Dude, it's page three. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
4: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं।
6: Page three eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं।
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं।
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं।
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
9: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG FinTax, your growth, our strategy.
10: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
11: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday, with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
13: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
15: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में? सब संभालेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
16: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
17: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
18: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 2148692668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।

वेलकम बैक टू 104.9 एफएम फनीजा रेडियो, देसियों का सच्चा रेडियो स्टेशन, क्योंकि देते हैं आपको सच्चा वाला साथ। मैं हूं आपकी ड्राइव टाइम साथी, हंसती मुस्कुराती स्वाती। आज जरा सा मूड और हंसने और मुस्कुराने का दौर डाउन है, कभी कभी हो जाता है डैलस, एंड खासतौर पर तब हो जाता है जब आप दोपहर की ना लंबी नींद ले लेते हैं, फिर आपके अंदर आलस भर जाता है और फिर मूड अपने आप ही थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन हम यहाँ मूड को लिफ्ट करा देने के लिए बैठे हैं। 9:09 हो चुके हैं, फ्राइडे वाइब इंजॉय कर रहे हैं। आई नो कि बातों में वो दम हो ना हो, लेकिन गानों की वाइब एकदम पक्की है डैलस। और आपको बता दूं कि इस समय तो अब त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, तो आप रेडी हो जाइए, अपनी पॉकेट टाइट कर लीजिए, क्योंकि आपको देने पड़ेंगे अपने चाहने वालों को खूबसूरत गिफ्ट। डायमंड आरंट जस्ट फॉर एवर, दे आर इवन मोर इररेसिस्टेबल ड्यूरिंग द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड। एंजॉय अप टू 25% ऑफ डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ गोल्ड अबव 18 कैरेट। सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तनिष्क के शोरूम जरूर जाइए और चेकआउट कीजिए इनके यूनिक और खूबसूरत कलेक्शन, और अपने किसी यूनिक वन को जरूर इस त्योहार के सीजन पर एक तोहफा दे डालिए, ताकि वो कह सके डैलस कि आपकी कशिश सरफरोश है।

टेक्सास प्राइमरी केयर 13 सालों से आपकी खिदमत में है हाजिर. जी हाँ, टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आवर कम्युनिटी एंड नाउ ग्रोइंग विद द ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन. इंट्रोड्यूसिंग लिनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लिनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज ऑल अंडर वन रूफ. क्या मिलेगा इससे ज़्यादा आपको बताइए. ओपन 7 days अ वीक फ्रॉम 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट इज नीडेड. यू नो वॉट, आवारापन के बारे में तो आप सुन ही रहे होंगे डैलस. यू नो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक जो दौर था, यानी कि पीछे का जो दौर था 90s के बाद 2000 वाला, उसमें बहुत सारे ऐसे अंडररेटेड एक्टर्स थे जिनकी टैलेंट को उभरने का मौका नहीं मिला. बहुत सारे अपने सुपरस्टार्स के बीच में उनकी एक्टिंग स्किल्स या उनके परफॉर्मेंसेस दब गए और उनको एक सेकेंड इनिंग्स आज के OTT प्लेटफॉर्म पर अपना हुनर, अपना जलवा दिखाने का मौका उन्होंने दिया है और ऐसे से उनके एक जो मेन करियर स्ट्रीम है उसको बूस्ट मिला है. उनमें से एक रह चुके हैं बॉबी देओल. क्या एक्टर थे, क्या फिल्में उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद बीच में बिल्कुल गायब हो गए थे और बिल्कुल दब गए थे. वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं हो पाए, उन्हें इस बात का दुख था, लेकिन OTT ने उन्हें आश्रम से जो कम बैक दिया और उसके बाद बैक टू बैक फिल्में, एनिमल जैसी फिल्में और भी अच्छी अच्छी फिल्मों के बाद लॉर्ड बॉबी कहला रहे. सेम ऐसे सनी देओल के साथ हुआ, उन्हें सेकेंड इनिंग्स खेलने का मौका मिला एंड गदर 2 के बाद उनका भी कम बैक हुआ. एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी फॉर इमरान हाशमी. आवारापन कब आई थी यार मूवी, 2007 में, एंड अब आवारापन 2 आई है एंड रातों रात अचानक से इतना हाइप और 100 करोड़ का बिजनेस एंड ऑल, वो सुपरस्टार कह रहा है. अब उनके लिए भी कुछ ऐसा मौका है जहां पर वो अपने हुनर का जलवा वापस से दिखा पा रहे हैं और एक अच्छे एक्टर साबित हो रहे हैं. दुनिया क्रेजी हो रही है उनके लिए. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम मोर एक्टर्स लाइक विवेक ओब्रॉय. क्या चार्म था उनका, लेकिन अचानक डुबा दिया गया उन्हें और फिर मौका नहीं मिला उन्हें वापस से उभरने का. दीपक तिजोरी, मुझे वो भी अच्छे लगते हैं. काश इन दोनों को भी ऐसा हाइप मिले और वो भी अपनी जिंदगी में कामयाबी के झंडे गाड़ें.

0: विशिंग ऑल द सक्सेस टू इमरान हाशमी एंड आप उनको लाइफ में कभी पीछे पलट के वो दिन देखने ना पड़े जो उन्होंने पहले देखे हैं। टैलेंटेड एक्टर को, किसी भी अच्छे आर्टिस्ट को उनका ड्यू क्रेडिट मिलना ही चाहिए। ओके, अब मूविंग ऑन टू गिव अवेज। जी हाँ, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फ्रेश इंडियन ग्रोसरीज, अलाल मीट, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानीपुरी, फ्रेश गन्ने का जूस, केटरिंग सर्विसेज, देन आपको कोई डाइनिंग करने के लिए कोई अप स्केल एक्सपीरियंस चाहिए तो आप चले जाइए फूडिस्तान। जी हाँ, जो कि ऑबरी में लोकेटेड है। फूडिस्तान ब्रिंग्स एवरीथिंग देसी ऑल इन वन प्लेस, प्लस दे ऑफर लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी ऑन ग्रोसरीज एंड फ्री डिलीवरी टू ऑन ऑर्डर ओवर $30 विद इन 5 miles। तो आपके लिए है कि भाई मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका देंगे आप मुझे जवाब और एक लकी विनर रिसीव कर सकते हैं इसमें वाइब इन करने का। और इस अपस्केल इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर आप जा सकते हैं और कोई भी एक फ्री आइटम रिसीव कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपको जवाब देना है, मैं आपसे सवाल करने जा रही हूं कि ये जो एक गाना है इसका 2.0 वर्जन अभी अभी आया है, बिल्कुल फ्रेश और न्यू, कुछ ही मंथ्स पहले। तो आपको बताना है कि इस नए वर्जन को किस पर फिल्माया गया है। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। वन लकी विनर विल रिसीव अ फ्री आइटम फ्रॉम डी वाइब रेस्टोरेंट, द अपस्केल इंडियन रेस्टोरेंट लोकेटेड इनसाइड फूडिस्तान। फूडिस्तान के अंदर डी वाइब रेस्टोरेंट है और वहां से आपको एक फ्री आइटम लेने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप जब फन एशिया का नाम लेंगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा यहाँ ग्रोसरी में, और जो आप गिव अवे जीतेंगे उसके लिए आपको रिसीव होगा फ्री आइटम। आपको देना है ये जवाब कि इस 2.0 वर्जन में, इस पुराने गाने के 2.0 वर्जन में कौन फिल्माया गया, मतलब किस पर फिल्माया गया है ये। एक्टर का नाम बताइए।
1: अरे कोई कॉल नहीं करेगा भैया, गाना
2: तो समझ नहीं रहा है, ये हिट गाना है, तेरे को नहीं करना, तू मत कर, मैं जा रहा हूँ।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a four-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
2: My name is Ritika Anand, Sanyas Vema Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
1: Experience meditation, breath work, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.
3: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
4: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
3: Fikar not. We have the perfect solution.
5: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
6: Floors clean.
7: Check.
6: Windows clean.
7: Check.
6: Kitchen clean.
7: Check.
6: Air ducts clean.
7: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
8: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
9: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
10: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
5: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन कमिंग सून।
11: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज

0: डालस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिर अख्तर खानजादा 6825516500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया.
1: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
3: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
4: तुमसे मिलके दिल का है.
3: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है.

वेलकम बैक ब्रेक के इस पार आपका स्वागत करती हूँ मैं आरजे स्वाति, हंसते मुस्कुराते हुए। आपको बता दूं कि रक्षाबंधन बिल्कुल नज़दीक है और अगस्त 28 को है रक्षाबंधन, जहाँ पर सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन का जो अटूट प्यार है वो देखने को मिलता है। वैसे तो पूरे ज़िंदगी कम पड़ती है इस प्यार के लिए, लेकिन एक दिन को बहुत प्यार से सेलिब्रेट किया जाता है एंड वी ऑलवेज सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स हम आप लोगों के साथ बहुत खूबसूरती के साथ मनाना पसंद करते हैं। फनीशा रेडियो की पूरी टीम आपको पहले से ही ये कहना चाहती है कि फेस्टिव सीजन्स की ढेर सारी बधाई हो। और अब आपको बता दूं कि दिस रक्षाबंधन फनीशा रेडियो एंड चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट तुरंत वांट टू हियर यू योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विथ योर ब्रदर और सिस्टर। आपको क्या करना है पता है, आपको सिर्फ एक मिनट का वॉइस नोट रिकॉर्ड करना है, व्हाट्सएप करना है 2148377147 पर एंड यू कुड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट दुरंत। क्या करना है आपको पता है ना, वन मिनट का वॉइस नोट रिकॉर्ड करना है और व्हाट्सएप करना है 2148377147 के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं फन एशिया रेडियो का सोशल मीडिया पेज चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट दुरंत, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। लीजिए एक खूबसूरत सा गाना जो कि दिलों में एक तरंग सा पैदा कर देता है, एन आवाज़ कितनी खूबसूरत, किसकी, शान शान की।

डैलिस, आपको पता है कि बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो सितंबर के महीने में होने वाले हैं, लेकिन एक ऐसा अनफॉरगेटेबल नाइट आप एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं जो आप सच में कभी नहीं भूलेंगे. द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट. आप एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन, जो कि उनके इवेंट का नाम है, वो सैटरडे सितंबर 26 को 8:30 PM से आप शुरू होने वाला है उनका शो. और आप चले जाइएगा क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर, जो कि लोकेटेड है एरन में. और ये इवेंट आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए. आपके फेवरेट सॉन्ग्स गाए जाएंगे उनकी आइकॉनिक वॉइस में, और सब कुछ होगा बिल्कुल लाइव. टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल 855-360 शोज, 855-360 शोज. रिवोल्यूशन द सोनू निगम लाइव एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर है वन एशिया नेटवर्क. सितंबर 26, 8:30 PM सैटरडे का दिन है. क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर लोकेटेड इन एलन. भूलिएगा मत. सोनू निगम से याद आया उनका एक ये खूबसूरत गाना. लीजिए, एंजॉय कीजिए और बिल्कुल महसूस कीजिए कि ऐसा ही एक्सपीरियंस आपको उस दिन मिलने वाला है. डेट सितंबर 22, सॉरी सितंबर 26, 8:30 PM.

If you are on H1, F1, and L1 visa or any other non-immigrant visa planning your path to US permanent residency, the law offices of Seema Mehta aapko bakhobi help karenge. Attorney Seema Mehta and her experienced team specialize exclusively in immigration law, including EB-5, investor visas, family and employment visas, perm, labor certification, and US citizenship. For more information on the EB-5 investor visa program, आप email कर सकते हैं info@seemamehtalawfirm.com. That's info@seemamehtalawfirm.com. And the law offices of Seema Mehta. तो आपको इन सब चीज़ों से related यानी सारे visa H1, F1 and L1 या कोई भी non-immigrant visa से related कोई help चाहिए तो info@seemamehtalawfirm.com पर ज़रूर email करें and contact करें. And आज के लिए लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त और मिलूँगी आपको अगले Friday. तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए and मुझे यादों में याद रखिए, भूल मत जाइएगा, क्योंकि मुझसे बेहतर साथी डैलस आपको नहीं मिलेगा. थैंक यू सो मच. दिस इज स्वाति तिवारी साइनिंग ऑफ.

0: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhi Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online third through sixth grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit nextgenspeakersacademy.com. That's nextgenspeakersacademy.com.
1: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a four-day meditation, bodywork, and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
2: My name is Ritika Anand, sannyas name Ma Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th, and 29th of August.
1: Experience meditation, breath work, intuitive movement, music, and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.
3: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
4: क्योंकि Sal's Hot Chicken भी तीन पे पहुंच गया.
5: Plano Richardson and now at a brand new location. Sal's Hot Chicken coming soon.
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
6: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
4: सच में? सब संभाल लेंगे.
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
7: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

0: Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Beta, 95% आए?
2: हाँ मम्मी.
1: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
3: मेरा?
1: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है.

0: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
2: तुमसे मिलके दिल का है।
0: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: Club Phonasia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना

0: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Panacea
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

0: हेलो गाइस, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वाचिंग फन एशिया रेडियो।
1: Don't miss out on the dance party of the year. Join the club Fun Asia Revolution and let the good times roll.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

0: Bringing South Asia closer, more closer. Funasia 104.9 FM.
1: Ha-oh.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे। बहुत रुकी है आज तू, पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: baby.
1: Variety is the spice of our station. 104.9 FM.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: हाय, दिस इज कुणाल कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू फनी शो रेडियो।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: मैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अजी सुनते हो?
3: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
4: The OG of Tax Planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
5: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
6: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: करेंगे सबका स्वागत।
1: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।
2: फिर नजरें मिलाती हूँ,

0: और मैं फूल फेंक रहा हूँ।
1: तुम?
0: अरे और फिर तुम जाने लगती हो और मजाक कर रहा था ना बिल्ली।

0: के अपना सा तू लगा कैसे
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
1: नहीं।
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
1: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
1: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग होते। आवर स्ट्रेटजी
4: AG Fintechs led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
5: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
6: Sathiya.
7: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
9: 360 shows True Payment presents Sonu Nigam live in Dallas.
10: Hi. तुमसे मिलके दिल का है।
8: Saturday, September 26th, 8:30 PM onwards at the Credit Union of Texas Event Center, Allen.
9: Tickets available at Ticketmaster. For more info, call 855-360-SHOWS. Exclusive media partner, Fun Asia Network.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Oora can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
11: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
13: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
13: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
13: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
13: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
15: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
16: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
17: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन, कमिंग सून।
18: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
19: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
20: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
21: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
20: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
22: तंदूरी नाइट्स, तंदूरी नाइट्स, तंदूरी नाइट्स।
0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Dallas, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए।
4: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल। एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलीशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल एक्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर एवरी एज।
2: लाइव परफॉर्मेंस बाय रागा बॉयज,
4: सैटरडे ऑगस्ट 22nd फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर, टेक्सास। डोर्स ओपन एट 2 PM। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। कायद मेला 2026।
2: मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं ही हूं।
9: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
2: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
10: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
11: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
10: कहाँ?
12: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
2: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
13: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 AM to 5 PM Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
2: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
14: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a 4-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
15: My name is Ritika Anand, sannyas name Ma Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: tracks that put you on the right track.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: Weekend ka plan abhi tak nahi mara. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
9: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
10: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
11: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
14: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
15: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
16: तारीख पर तारीख.
17: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
18: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
19: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
20: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
19: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
21: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Sadia.
22: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
23: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
24: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
25: तुमसे मिलके दिल का है.
23: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
24: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

सुप्रभात दोस्तों, सुस्वागत है माफी के कार्यक्रम म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूँ आपके संग संगीता। आपका मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ रहेंगे मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये वीकेंड सुखद जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। और अब आप जुड़े हैं मेरे साथ ऑन दिस म्यूजिकल जर्नी, जहाँ मैं ले चलूंगी आपको बेहतरीन संगीत की ओर। शुरुआत करेंगे कुछ मीठे तरानों के साथ और फिर ले चलेंगे आपको एक विषय, एक टॉपिक की ओर, और उसके साथ करेंगे हम वार्तालाप और कुछ बातें उसके लिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये फोन नंबर आपको देना, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद अस फॉर एनी रिक्वेस्ट यू मे हैव इन दिस सेगमेंट ऑल द वे अंटिल 8:30। नंबर टू द स्टूडियो 972-235-5555. With that, a beautiful track to start off the morning.

आतिफ असलम, रणबीर कपूर, कटरीना कैफ वर द स्टार्स फॉर दिस सॉन्ग, जो लिया फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से. एंड इन माई माइंड रणबीर कपूर इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री. Amazing. He's just an outstanding actor. If you have something to share about that, give me a call and let me know. But I would also like to say ki acting ke saath saath Ranbir Kapoor is a football enthusiast and supports charities and organizations. Aur aap jante ho ya na shayad ki he is a vice captain of the All Stars Football Club, which is a celebrity football club that raises money for charity. और कुछ साल पहले ही प्लेड द गेम टू रेज फंड्स फॉर द मैजिक फंड्स ऑर्गेनाइजेशन विच इज एन एनजीओ फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. अमेजिंग अमेजिंग स्टफ कमिंग फ्रॉम रणबीर कपूर. आई कैंट वेट फॉर हिज नेक्स्ट मूवी टू बी रिलीज्ड. व्हाट से?

0: दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर दिखाई दिए थे इस गाने में, जुलिया फिल्म बचना है हसीनों से। अगर आप देख रहे हैं इस गाने को तो आप जानते हैं कि ये बेसिकली ग्रीस में है और बहुत सारी रॉक्स हैं, क्लिफ्स हैं, एंड दे आर ऑन टॉप ऑफ द रॉक्स। और मैं देख रही हूँ इस गाने को और मुझे कुछ यू नो आई एम गेटिंग अ बिट कंसर्न कि अगर ये कुछ इंसिडेंट हो गया, ये कहीं गिर विर गए तो वेल वो तो ग्रीस में है। अगर ये बात, ये वाक्या कुछ इस तरह डैलस में हो, स्लिप या फॉल हो गए, या कभी यू नो व्हाट आई वांट आल्सो ऐड टू दैट, इफ़ यू आर इन्वॉल्व मे बी इन अ कार और अ ट्रक एक्सीडेंट, यू वांट टू हैव एन अटर्नी बाय योर साइड। सो आई वांट टू गिव यू द नेम अटर्नी ओमर ख्वाजा। अटर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व। उसी साथ साथ अगर आप you know, you have had a major fall or an accident and you have to deal with insurance companies, aapko pata hai ki bahut hi complicated masla rehta hai. Aur iske saath bhi help karte hain attorney Omar Khwaja. He will make sure that you are compensated. For a free consultation, I'd like to give you their phone number. It is 469-300-5046. And they'll fight your case and you don't pay them until you win. For more information before any of that happens, so that you know what all can you kind of what all can you reach out to them for, the website is attorneyomar.com. One more time, that is attorneyomar.com.
1: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Phoenicia Radio.
0: तो जैसे मैंने कहा कि हम अगले सेगमेंट में एक टॉपिक ले आएंगे और वो टॉपिक है बस 5 मिनट। बस यही 3 अल्फाज हैं और इन 3 अक्षरों में बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है, राइट? कोई पूछे आपसे कितनी देर लगेगी, आप कहते हैं बस 5 मिनट, राइट? थिंक अबाउट दैट। और उन 5 मिनट का मतलब क्या होता है? इज इट ट्रूली 5 मिनट्स और नॉट? We will talk about that at the other end of this song and an ad break.

0: इमरान हाशमी दिखाई दिए थे इस गाने में। इमरान हाशमी छा गए हैं करंटली बॉलीवुड में विथ हिज फिल्म आवर अपन टू दैट इज डूइंग रियली रियली वेल।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
7: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
9: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
8: सच में? सब संभालेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
11: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
10: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
12: Pan Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
10: Visit Pan Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
13: Floors clean.
14: Check.
13: Windows clean.
14: Check.
13: Kitchen clean.
14: Check.
13: Air ducts clean.
14: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
15: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
16: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
17: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान सादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान सादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
18: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
19: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज। DFW, get ready to relive the magic of Kumar Shanu live, unforgettable 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhoomiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking.

सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका और मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ है मीठे तराने और खूबसूरत संगीत, और है टॉपिक, और टॉपिक है कुछ इस तरह। टॉपिक का नाम है बस 5 मिनट और। बस यही वो अल्फाज है जिनमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है। सवाल होता है कितनी देर लगेगी, वो आते हैं बस 5 मिनट और। आपको पता है कि 5 मिनट में नहीं होगा, और पता है क्या, जो सवाल पूछ रहे हैं उन्हें भी पता है कि 5 मिनट में नहीं होगा, फिर भी वो जो कॉन्फिडेंस है वो बोलता है बस 5 मिनट और। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कभी कभी वो 5 मिनट 10-15 मिनट हो जाते हैं, कभी कभी 20-30 मिनट हो जाते हैं, और कभी भाई बहुत देर तक चलती है। लेकिन हमारी ओरिजिनल प्रेडिक्शन स्टिल द सेम 5 मिनट्स। तो इसी पर आधारित आज का ये शो है, इस मैजिकल इमेजिनरी स्लाइटली डिसऑनेस्ट यूनिट ऑफ टाइम के नाम बस 5 मिनट।

0: the Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
1: तो हम बातें कर रहे हैं अबाउट दोज प्रेशियस 5 मिनट्स. पर पता है क्या, सबसे डेंजरस सेंटेंस भी यही है, बस 5 मिनट और. क्यों? सुबह उठे, अलार्म बजा, अलार्म बजता है और हम कहते हैं बस 5 मिनट और. 5 मिनट्स लेटर, ओके नाउ. फिर दिमाग बोलता है एक्चुअली यार बस 5 मिनट और, उठ जाते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, 5 मिनट और, बस 5 मिनट और यहीं से होती है शुरुआत प्रॉब्लम्स की. क्योंकि वो 5 मिनट कभी भी सिर्फ 5 मिनट नहीं होते. अलार्म के साथ 5 मिनट और कभी कभी धोखा भी दे जाता है, एज इन वो 5 मिनट लगते हैं बस 5 ही मिनट, बट देन यू काइंड ऑफ एक्सीडेंटली टेक अ लॉन्गर नैप एंड देन होती है शुरुआत दिन की. और दिन भर हम कहते हैं बस 5 मिनट और. बट यू नो व्हाट, दैट स्नूज बटन, वेल स्नूज बटन के साथ जो रिश्ता है ना, वो बड़ा ही खतरनाक है. वो हमें बार बार मौका देता रहता है, हम बार बार उसे डिसअपॉइंट करते हैं और फिर ये जर्नी शुरू होती है. वी से वेक अप सिड.

either you don't want to hit the snooze button on this one, you want to go today, or rather now, to the Tanishq Festival of Diamonds, where you would enjoy up to 25% off on diamond value and making charges, plus 0% deduction on the exchange of old gold above 18 carats. You know what? Diamonds aren't just forever. They are even more irresistible during this Tanishq Festival of Diamonds. So go out there, celebrate the season with timeless sparkle at Tanishq. Terms and conditions do apply. Visit Tanishq. They are located in Frisco. And with that, the next thing I want to say is back to music. Well, how about a little bit of understanding what we are doing? We are talking about the most dangerous 5 minutes in the history of morning, when we say bas 5 minute or 2 hour snooze button, aankhe band, or kisi tarah wo agle 37 minutes kahin to kho jate hain. Or phir we find ourselves negotiating, well, shower abhi nahi karte, sham ko le lenge, ब्रेकफास्ट अभी नहीं करते हैं, आई कैन स्टिल मेक इट, और बस भाग दौड़ में निकल जाते हैं. बट यू नो व्हाट, दिस सिलसिला ऑफ 5 मिनट और कंटिन्यूज ऑन, इट कंटिन्यूज ऑन इवन व्हेन यू आर डूइंग सिंपल थिंग्स. अलार्म बंद किया और फिर किसी तरह उठ भी गए, लेकिन फिर फोन हाथ में आया, फोन हाथ में आया, और कभी कभी फोन कॉल पर, यानी कि किसी से वार्तालाप करते हुए भी वक्त निकल जाता है, क्योंकि यू विल से, वेल वो गल्ला कर दी, राइट, हियर वी गो, गल्ला कर दी.

ये तो बात हुई फोन पर गल्ला करने वाली, पर अब तो हमारे हाथों में स्मार्टफोन्स हैं, तो हम कहते हैं बस 5 मिनट और फोन देख लेती हूँ, बस मौसम देख लेते हैं, वेदर खोलते हैं, फिर चले जाते हैं किसी और ऐप पर, उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं हम सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया से एक रील पर, रील ख़त्म हुई तो ऑब्वियसली दूसरी रील आई, फिर कभी कभी रील देख लिए और फिर सोशल मीडिया के पास वापस चले गए, वहाँ पर तो भाई कमेंट्स भी होते हैं, कमेंट्स भी देखने हैं, कमेंट्स देखते देखते बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, किसी का प्रोफाइल खोल लिया, प्रोफाइल खोल के कोई और रील पे चले गए और फिर वेट, हम यहाँ कैसे पहुँचे?

तो हम कह रहे थे कि हम फोन को 5 मिनट के लिए उठाते हैं, बस इरादा तो यही है, पर फोन हमसे 45 मिनट लेता है। पर अगर आपका इरादा है कि आपको अपने सपनों का घर खरीदना है, सो देन ऑल यू टू डू इज गिव अ कॉल टू ड्रीम होम मॉर्गेज एट 972-245-5626, या उनकी वेबसाइट पे जाइएगा एट dreamhomemortgage.com। और पता है क्या, ड्रीम होम मॉर्गेज विल मेक श्योर दैट योर ड्रीम होम इज क्लोजर देन यू थिंक, क्योंकि ये 1998 से लेकर अब बहुत सारे परिवारों को हेल्प कर चुके हैं टू ब्रिंग देयर होम ओनरशिप इनटू रियलिटी विद पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशंस एंड ए स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस। दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड देयर एक्सपीरियंस टीम, दे आर कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शंस टेलर्ड टू योर नीड्स। So whether you're buying your first home, you are upgrading your home, or are refinancing, remember the name. You can start your home ownership journey with confidence today with the name Dream Home Mortgage. Dream Home Mortgage, making dream homes happen. तो हम कह रहे थे कि फोन उठाया किस लिए और फिर कहां से कहां भटक गए। तो ऐसे कोई वाक्या आपके साथ हुए हैं where you picked up the phone for a particular reason, but you know, sometimes you didn't even get to that and you spent a lot of time surfing and just, you know, hanging out on the internet. ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ, बताइएगा मुझे। Would love to hear from you and you know, learn from your experiences at 972-235-5555.

0: Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
3: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
4: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन, कमिंग सून।
5: आर यू ऑन F1 वीजा एंड लुकिंग फॉर मॉर्गेज ऑप्शंस? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन? सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 926641।
6: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
6: कैसे?
7: पेज 3 ईटरी?
6: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
7: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
8: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
9: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ है मीठे तराने और खूबसूरत संगीत और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। साथ साथ टॉपिक इज D3 or 4 गोल्डन वर्ड्स, बस 5 मिनट और ये वाले जो अल्फाज हैं और ये जो शब्द हैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम। सुबह उठते ही भाई अलार्म बजता है तो कहते हैं बस 5 मिनट और, स्नूज बटन पे डाल देते हैं, फिर एक बार बस 5 मिनट और फिर फोन हाथ में आता है और कहते हैं अब उठ रहे हैं बस 5 मिनट और, बस यूं ही वक्त निकलता जाता है। और कौन से भैया ऐसी जगहों पर या ऐसे स्पॉट्स पे, इंटरेस्टिंग सिचुएशंस पे जब हैं जो और कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस हैं जब आप कहते हैं बस 5 मिनट और, मैं आई या आता हूँ, अभी आया, बस 5 मिनट और, बताइए मुझे एट 972-235-5555। 5 मिनट और हैज बिकम दैट सिग्नेचर यूनिट ऑफ टाइम। व्हेन वी वांट मोर टाइम, यू नो, इट्स मोर लाइक अ प्रॉमिस, promise to ourselves, promise to someone else that is in that unit of time, 5 minute or. Think about it and let me know at 972-235-5555. And then we will continue this topic all the way until 10 a.m. agar aap saath dein. Dial the number. Share with me. 972-235-5555 is the number to the studio.

0: All right, so without further ado, I want to add that वैसे तो बहुत वेट करना पड़ता है, वैसे हम वेट करते हैं, वी आर नॉट रेडी यूजुअली टू गो टू द डॉक्टर्स ऑफिस. हाउ एवर, यू नो वट, वेन यू गो टू पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, यू ऑलरेडी नो दैट योर डॉक्टर इज गोइंग टू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू स्पेंड अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ केयर नीड्स एंड यू विल बी देयर बिकॉज यू रियली थिंक you know that it is important for someone to be interested in your health just as much as you are. So that name to remember is Passion Health Primary Care, where every appointment is scheduled for 30 minutes so they get a good understanding of your health. And also because at Passion Health, you're not just a patient, you are family. तो आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए और आपकी कम्युनिटी की सेहत के लिए याद रखिएगा नाम पैशन हेल्थ केयर. 30 minutes इज ऑल इट टेक्स टू कंप्लीट योर एनुअल फिजिकल एंड एंग्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग और अधिक टेस्टिंग और जानकारी सब अवेलेबल है एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. सो व्हाई वेट, स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टुडे. They can be reached at 214-666-6259. Make your appointment and see how they can help you. Passion Health Primary Care. Your health is our passion.
1: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
0: I had a caller who said, Bhai, meri to kahani ye hai. मेरी कहानी हर एक सिचुएशन में हर एक पॉइंट पे यही है, बस 5 मिनट और. आई एम ऑलवेज रनिंग अगेंस्ट टाइम एंड फाइटिंग विद इट, बट सम प्लेसेस ही डज गेट ऑन टाइम व्हिच इज ऑसम. थैंक्स फॉर योर कॉल, आई अप्रिशिएट दैट कॉल. तो काफ़ी और सिचुएशंस हैं जहां पर हम मांगते हैं बस 5 मिनट और, एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम, एंड इट्स मोर लाइक यू नो आई नो आई एम गोना बी लेट बट माई यूनिट ऑफ मेजरमेंट is 5 minutes. तो ये एक फेमिलियर सिचुएशन में भी होता है. 7 बजे निकलना है, सैटरडे की शाम है, पार्टी पर जाना है. पार्टी का वक्त वैसे 7 है, लेकिन भाई हम 7 बजे निकलेंगे क्योंकि यू नो वट, डैलस में अबाउट 30 मिनट्स तक कहीं भी पहुंच जाते हैं. एंड इफ यू आर मेंटेनिंग दैट काइंड ऑफ टाइम लाइन, देन आपने 7 बजे निकलना है. 6:15 बज गए, हम तैयार हो रहे हैं. तैयार हो रहे हैं मतलब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, नो एक्शन जस्ट येट. अब शुरुआत करते हैं. 6:40 को सडनली फ़ोन चेक करते हैं. अच्छा, वो तो भाई तैयार हो रहे हैं, अब अर्जेंसी आ रही है. और तब वो शुरुआत करते हैं, कहते हैं बस 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, बस 5 मिनट. और फिर काउंट डाउन शुरू होता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तैयार हो रही हूँ, बाल बन रहे हैं, वॉट नॉट, राइट. ये कहते हैं वाह तेरी अदा, इसके क्या कहने, उफ तेरी अदा.
2: लेकिन उसे डाइल्यूट करना वोडका के साथ.
3: तो फिर पीने का क्या फायदा?

Well, if you would imagine, some of us actually get ready while listening to great music. And Uff Teri Ada is a great one. एकदम मूड में ले आते हैं तैयार होने के वक्त. और यू नो तो द काउंटडाउन हैज स्टार्टेड. 6:50 हो गए. वेल, बाल बन रहे हैं. फिर 5 मिनट बाद पायल पेनली हमने 7 बजे पूछ रहे हैं. यस, 7 o'clock इज हियर. द क्लॉक इज मूविंग, राइट? द क्लॉक इज टेकिंग. बट वी आर नाउ ओनली एट 7 o'clock थिंकिंग ऑफ मेरे जूते कहाँ हैं. अच्छा, जूते मिल गए, पेन लिए, अब क्या? वेल, अ फ्यू मिनट्स लेटर मेरी चाबी देखी है. एंड देन इट इज ऑल्सो अबाउट 7:10 और मैं कहती हूँ आई एम लिटरली रेडी. जोर से आवाज आती है, आई एम लिटरली रेडी. लिटरली रेडी? वेल, लिटरली रेडी तो आप आई नहीं है अब तक नीचे. व्हाट इज गोइंग ऑन? आ रही हूँ, आ रही हूँ. And then you realize कि मैंने कहा तो था 5 मिनट. 5 मिनट बोलते हुए, लेकिन it's not a calculation. It is more of a negotiation. It is basically our way of saying, please मुझे अभी rush ना करो. मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ.

0: And we have our winner. Her name is Lucky Sharma. Congratulations on winning that.
1: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में सोना मसूरी राइस नानक पनीर पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर।
2: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
3: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to करना ही पड़ेगा मैडम।
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
8: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो फेमस निहारी सिजलिंग ग्रिल्स क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
9: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
9: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
9: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
9: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
11: हेल्पलाइन,
12: हाउ मे
11: आई हेल्प यू?
12: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
11: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
13: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग।
14: बेटा, 95% आए?
15: हाँ मम्मी।
14: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
16: मेरा?
14: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
16: वो
17: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
18: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
19: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
3: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन, कमिंग सून।
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
6: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
0: And एंड अ वार्म वेलकम बैक टू दिस मॉर्निंग्स फाइनल सेगमेंट ऑफ म्यूजिक मंत्र, जिसमें रही हूँ मैं आपके संग संगीता, आपका और मेरा साथ रहता है हर शनिवार सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक। तो ब्रेक के पहले हमने आपसे किया था एक सवाल कि जो अगर अल्फाज हों सबसे ज्यादा चमक रही इस पार्टी में, तो वो गाने का आई गेस टाइटल क्या है।

8 से लेकर 10 बजे तक। तो ब्रेक के पहले हमने आपसे किया था एक सवाल कि जो अगर अल्फाज हों सबसे ज्यादा चमक रही इस पार्टी में, तो वो गाने का आई गेस टाइटल क्या है। वेल आई गॉट दैट वन। और पता है क्या, हम बातें कर रहे थे कि जब तैयार हो रहे हैं तो यू नो काउंटिंग डाउन द टाइम एज वी गो अलॉन्ग इन द गेटिंग रेडी प्रोसेस। झुमका पहन लिया हमने, जूते पहन लिए, अब कह रहे हैं आ रही हूँ। वेल बैग खो गया, बैग कहाँ है, बैग मिल गया, बैग को ले लिया और कहते हैं आइए अभी चलिए, तो वो हम कहते हैं आई आई। एंड विद दैट सेट I'm literally here. Well, I don't see you right here. We have to leave now. Yeah, but I can't find my earring. तो वो झुमके वाली बात भी हो जाती है। और पर जब आते हैं तो देखते हैं, well, तैयार तो यूं हुई है जैसे कि you are going to be the best. And yes, सबसे ज्यादा चमक रही है इस पार्टी में। This song is called Chote Chote Peg. Here it is. I have a couple more songs lined up and a couple more situations where we say bas 5 minute aur. We'll get to you that one in a minute as well. Any other points where you think bas 5 minute aur is applied or applicable and have you tried it as a category of time, not as exactly 5 minutes, let me know.

और दोस्तों पता है क्या, वक्त हो रहा है कुछ खाने पीने की शुरुआत करने की फॉर द डे इफ यू हैवंट स्टार्टेड येट. एंड यू नो व्हाट, इट्स आल्सो द बिगिनिंग ऑफ अ फैंटास्टिक वीकेंड एंड इट इज टाइम टू गो एंड एंजॉय सम डिलिशियस फूड एट अ प्लेस दैट यू नो द नेम ऑफ. In fact, I'd say, you know, you have found a truly iconic food brand when just hearing the name brings back a lot of memories. Aur yahi baat hai that Hoco has been for generations across India and now right here in our part of the world, yani ki North Texas. तो यदि आप क्रेव कर रहे हैं इनके लेजेंडरी चनापुरी को या आइकॉनिक सैंडविचेस को, फ्लेवरफुल करीज को या द फेमस होको कोल्ड कोको, यू नो यू वांट टू बी देयर. यू डोंट हैव टू

0: wait for your next trip to India anymore. It is right here in our town, located at 2693 Preston Road, Suite 1000 or 1000, Frisco, Texas. And you want to go out there to experience the authentic flavors that have made it one of India's most loved food brands. For the entire menu and more information, visit hoco.us. One more time, that's HOCCO, I'm going to spell it for you, HOCCO.US. Come hungry and leave with the taste of India.
1: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Phoenicia Radio.
0: 104.9 FM. So, I asked a little bit earlier. कि भाई हम कहते हैं बस 5 मिनट और विच इज़ बेसिकली लाइक अ कैटेगरी ऑफ टाइम इट्स लाइक अ प्रॉमिस वी मेक टू आर सेल्व्स ओनली टू बी ब्रोकन इट्स यू नो इट्स रियलाइजिंग दैट यू आर एक्चुअली डिनाइंग और यू आर इन डिनाइल अबाउट दैट स्पेसिफिक टाइम एंड सो यू से बस 5 मिनट और वो लागू होता है जब आप यू नो लेट इवनिंग थक कर आते हैं एंड यू आर रेडी टू रिलैक्स और कुछ मेरे ख्याल से 9:30 के बाद आप कहते हैं सोना नहीं है बीते हैं चलिए थोड़ा सा बस एक एपिसोड हाउ दैट बस एक एपिसोड देखते हैं ऑफ समथिंग दैट इज स्ट्रीमिंग एंड यू आर रेडी फॉर जस्ट वन एपिसोड और बस यूं ही यू नो व्हाट कम्स नेक्स्ट एपिसोड आता है आप उसमें बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं यू गेट एंगेज यू गेट इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरी लाइन एंड द एपिसोड एंड्स गेस व्हाट द स्ट्रीमिंग चैनल्स दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू राइट आफ्टर दैट वन एपिसोड एंड्स 5, 4, 3, 2, 1 द नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट्स एंड व्हाट हैपेंस देन वेल यू आर गेटिंग इनटू द स्टोरी लाइन हैज बीन बिल्ट इट इज डेवलप्ड Developing gets you on a cliffhanger on that next episode. And before you know it, it is 1 a.m. And what do you say to yourself at that time? Hai, main aisa kyun hoon? I can't keep up with the timeline. Yeah? Have you found yourself doing that? Share with me at 972-235-5555.

0: और इस समय बताना चाहूंगी कि आपने तैयार हो जाना है फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक बिकॉज सोनू निगम द वन एंड ओनली सोनू निगम इज गोइंग टू कम लाइव इन कॉन्सर्ट फॉर हिज एक्सपीरियंस कॉल्ड रेवोल्यूशन हैपनिंग ऑन सैटरडे सितंबर 26th at 8:30 PM at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. आपके पसंदीदा गीत और उनकी आइकॉनिक आवाज सब साथ होंगी उसके लिए टिकट उपलब्ध कीजिए एट Ticketmaster. For more information, call 855-360-SHOWS, यानी कि 855-360-SHOWS. This is Revolution by Sonu Nigam Live, exclusive media partner. Fun Asia Radio. You want to be there, guys, and have a great, great, great time.
1: 104.9 FM. Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.
0: तो मेरे ख्याल से आप मेरे साथ सहमत होंगे कि आज हमने समझा है कि बस 5 मिनट ये जो अल्फाज हैं असल में टाइम का मेजरमेंट नहीं है. ये एक वादा है कभी सामने वाले को और कभी खुद को. कभी हम सच में 5 मिनट में काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं लाइक इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम. यू रियली वांट टू कीप अप विद दैट सिर्फ 5 मिनट. यू वांट दैट टू कम ट्रू. पर कभी हम बस 5 मिनट मांग रहे होते हैं बिकॉज वी नो वी नीड मोर. और शायद इसीलिए बस 5 मिनट ये जो टर्म है ये जो फ्रेज बन चुका है इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि 5 मिनट के अंदर हमारी सारी पॉसिबिलिटीज जिंदा रहती हैं. जैसे कि मैं तैयार हो जाऊंगी, मैं आ जाऊंगा, मैं बस एक एपिसोड देखूंगा, बस एक थोड़ा सा फोन चेक कर लूंगी, बस मैं 5 मिनट और सोऊंगी. सच क्या है वो तो क्लॉक ही जानता है पर हम तो भाई बस 5 ही मिनट बोलेंगे क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं.
2: हमारे पास 2 ही रुपया है
0: राइट.

0: भागो भागो कोई गधा अपने पल्ले बांध न जाए, भाग झिंकी भाग। वहाँ मुफ्त की रबड़ी खाए, देखो अपने रज्जू ताओ।
1: मक्कल घुमा के मक्खी उड़ाए, रतन और ताऊ दोनों बिकाओ।
0: चुटकी, भगवान करे वो सुखी रहे और उन दोनों का साया भी हमसे दूर रहे।
1: हर वक्त टोकती रहती है, तू मेरी बहनी भाई है।

हम तो ऐसे हैं भैया, हमेशा ही कहेंगे 5 मिनट, और 5 मिनट इज वॉट एवर अमाउंट ऑफ टाइम वी रियली नीड इट टू बी. कभी कभी इट्स अबाउट ऑप्टिमिज्म और कभी कभी बहाना, कभी इट इज डिनाइल और कभी इट्स अ रेस, एंड समटाइम्स इट्स सिंपली अ लिटल बिट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम वी डोंट वॉन्ट टू गिव बैक. ऑल आई टेल यू वॉट, हमारे ये बस 5 मिनट वाले जो अल्फाज है ना, इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि 5 मिनट के चक्कर में पूरी रात निकल जाती है. वाल घड़ियाल देखी, 4 बज गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है.

0: जिंदगी के कई रंग, फनीशा रेडियो के संग।
1: और उम्मीद करती हूँ कि आज की इस प्रस्तुति को आपने उतना ही पसंद किया जितना मुझे अच्छा लगा आप तक ले आने के लिए। ले आऊंगी फिर एक बार एक नई प्रस्तुति, एक अनोखी प्रस्तुति अगले सैटरडे ठीक 8 बजे। तब तक के लिए मुझे यानी कि संगीता बचानी को दीजिए इजाजत। साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्टूडियो द फन एजर रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर।

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
6: कौन सा?
5: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
6: अरे सारे तो सेम है।
5: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
6: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
8: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
7: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी, एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
1: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
14: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
15: फैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली, और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
14: विजिट फैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
16: फ्लोर्स क्लीन
17: चेक,
16: विंडोज क्लीन
17: चेक,
16: किचन क्लीन
17: चेक,
16: एयर डक्ट्स क्लीन।
17: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
18: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
19: एक और लड्डू ले लो।
6: थोड़ी और बिरयानी।
19: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
7: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
4: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, वी आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
8: एक डर दी, दी, दी।
20: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
21: क्योंकि Sal's Hot Chicken भी तीन पे पहुंच गया.
22: Plano Richardson and now at a brand new location. Sal's Hot Chicken coming soon.
4: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं. और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts, Plano. Limited seats, free parking and meet and greet options available. Tickets at eventbrite.com. More info 214-869-2668. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.
23: Good morning, Dallas. I hope you're having a beautiful Saturday morning with your friends, family and loved ones. This is Prem Joshi. वैसे मेरा शो हर संडे को होता है 8 से लेकर 10 बजे तक, पर आज थोड़ा सा ट्विस्ट है स्केड्यूल में, सो आई होप दैट यू आर एंजॉइंग एज मच एज आई एम दिस मॉर्निंग. एंड ऑफ कोर्स टू ऑल आवर रेगुलर लिसनर्स, दे नो द ड्रिल, बट टू ऑल द न्यू लिसनर्स, वेलकम वेलकम. हम पहले घंटे में हमारा पॉप सेगमेंट बजाते हैं, जहाँ पे हम बजाते हैं सम अमेजिंग पॉप नंबर्स फ्रॉम द 90s, 2000s एंड इवन टुडे. एंड ऑफ कोर्स वी मूव टू द ब्लॉकबस्टर सेगमेंट फ्रॉम 11 टू 12, वेयर वी प्ले सम अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग्स. सो एज यू ऑल नो द स्टूडियो नंबर, आई वांट टू मेंशन दैट अगेन, 972-235-5555. You can also follow us on social media. DMs are open on Prem Joshi Podcast, PremJoshi Podcast on Instagram and Facebook. You can let us know your jam. We'll give you a shout out. First song of the hour, Tanha Dil by Shan.

लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू फील लाइक बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार, तो आप अकेले नहीं है, बिकॉज DFW हीट वार्निंग हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर फिफ्थ स्ट्रेट डे एज टेम्परेचर नियर 107. जी हाँ, 107. सोनाबाद की जरूरत नहीं है, आप घर के बाहर जाइए, 5 मिनट में सोनाबाद हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट. इट्स दैट क्रेजी. प्लीज मेक श्योर यू आर हाइड्रेटेड, प्लीज मेक श्योर द पेट्स आर इनसाइड, प्लीज टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स. बिकॉज हम है ना यहाँ पे DFW में, मैंने बहुत देखा यार, अप्रैल मई में लोगों को एकदम से जिज्ञासा हो जाती है टू बिकम दीज प्लांट ओनर्स और प्लांट फादर्स एंड मदर्स, और बहुत सारे प्लांट्स लेके आते हैं, एंड फिर ये ऐसी गर्मी होती है, देन यू आर नॉट एबल टू मेंटेन, एंड आई एम वन ऑफ यू गाइज, राइट? प्लीज मेक श्योर दैट दे आर हाइड्रेटेड. ऑफकोर्स देर आर सिटी रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो विद इरीग्रेशन एंड फ्लावर बेड, बट यार मेक श्योर दैट दे आर हाइड्रेटेड एज वेल. एक छोटा सा इफ यू कैन इंस्टॉल लाइक अ बर्ड फीडर, जहाँ पे थोड़ा सा खाना उनके लिए और उनका उनके लिए पानी हो जाए, अमेजोन पे $20-30 में हो जाता है यार, थोड़ा सा कर लीजिए. लेट्स डू समथिंग फॉर आर एनिमल्स एज वेल. कीप हिम कमिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. बहुत अमेजिंग सॉन्ग्स आ रहे हैं. 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर. 972-235-5555. कीप वन थिंग इन माइंड, इट हैज टू बी अ पॉप सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम्स एंड नॉट फ्रॉम द मूवीज. रात शबनमी बाय आशा भोसले.

जानम समझा करो, और जानम के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आ चुका है एट श्री कृष्ण ज्वेलर्स। ज्वेलरी इज मोर देन एक्सेसरी, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी, फ्रॉम क्लासिक गोल्ड डिजाइंस टू स्पार्कलिंग डायमंड्स एंड फ्रॉम इंट्रिकेट कुंदन टू स्टनिंग पोल्की कलेक्शन, एवरी पीस इज क्राफ्टेड टू सेलिब्रेट लाइफ स्पेशल मोमेंट्स। नाउ वेलकमिंग यू एट द न्यू लोकेशन 13145 स्वीट 220 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को टेक्सास 75035, श्री कृष्ण ज्वेलर्स, क्राफ्टिंग फाइन ज्वेलरी and cherished memory since 1967. Ladies and gentlemen, welcome back. बहुत जबरदस्त recommendation आ रहे हैं Dallas वासियों को। मैंने क्या बोल दिया यार, pop गाने हमें recommend कीजिए, और लोगों ने अपने nostalgic memories से उठा उठा के मुझे गाने फेंके and I'm loving it. Ladies and gentlemen, keep them coming. Follow me on Instagram, Facebook और YouTube, जहाँ पे भी आप time pass करते दिन में वहां पे हम अवेलेबल है दोस्तों। इट्स कॉल्ड प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट। वी आर टॉकिंग टू सम अमेजिंग पर्सनालिटीज, अमेजिंग पीपल हु यू नो बेटर आवर लाइव्स। वी आर टॉकिंग टू पीपल फ्रॉम इमिग्रेशन, हेल्थ, लॉ, डेंटिस्ट, मेडिसिन, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। हम सभी से बात करते हैं जो हमारी लाइफ को बेहतर करते हैं हम व्हेन वी लिव इन अमेरिका। नेक्स्ट गाना लकी अली का, कितनी हसीन जिंदगी है ये।

सच एन अमेजिंग सॉन्ग लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप हिम कमिंग यार. आज हमारे एक बहुत ही जबरदस्त ग्रैंड स्पॉन्सर है जिसकी वजह से हम एक छोटा सा एक बॉलीवुड क्विज खेलने वाले हैं लेडीज एंड जेंटलमैन. सो मेक श्योर यू आर ट्यून्ड इन टू फनेशिया एट 104.9 FM एंड यू लिसन टू मी एंड यू लिसन टू आर सॉन्ग्स एंड यू लिसन टू आर बॉलीवुड क्विज, क्योंकि आपको मौका मिलेगा एक जबरदस्त गिव अवे का. सो स्टे ट्यून्ड इन एंड मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, PREMJOSHI podcast, Prem Joshi podcast. Next Gana, one of my favorites, legend, iconic personality, Mr. One and Only KK, who's no longer with us, but through his music, through his songs, he will be eternally with us. Yaro Dosti by KK.

आई जस्ट हैड सो मेनी कॉल्स व्हाइल वी वर प्लेइंग दिस सॉन्ग. लोगों ने बोला प्रेम भाई यार कॉलेज के दिन वो याद आ गए, किसी ने बोला स्कूल के दिन याद आ गए, एंड एंड एंड राइटली सो यार. दिस सॉन्ग इज सो सो क्लोज टू आवर हार्ट, स्पेशली ऑल द मिलेनियल्स आउट देयर हु आर द 80s एंड द 90s किड्स आउट देयर. यू आर नॉट फॉरगॉटन यार. एंड समटाइम्स वी ऑलवेज टेंड बैक टू आवर म्यूजिक. ऐसा नहीं है कि हमें नए गाने पसंद नहीं है, बट द सॉन्ग्स दैट वर sketched in our memories are the 90s and the early 2000s, and especially the pop segment. What a beautiful genre it was. I hope we are able to revive that again in 2026. All right, ladies and gentlemen, I do want to mention about Page 3 E3. Breaking news is on Page 3. Dallas has got a new flavor at Hub 121, Page 3 E3, where bold Indian street food meets modern flair. Kebab, chaat, fusion, bite, mocktails, vibrant vibes for brunch, lunch and dinner. Visit page3e3.com for further details. Next gana is, oh my god, it's one of my personal favorites. Yeah. So thank you, Ranjit, for recommending this song, Dr. Zeus ka Kangana. Whoop.

0: heading towards a short commercial break. I'll see you on the other side.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
3: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
2: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
3: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
2: और एंटरटेनमेंट,
3: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में है।
2: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
3: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
4: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
10: ना सब, और प्राइस
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं हीरो।
12: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a 4-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
13: My name is Ritika Anand, sannyas name Ma Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
12: Experience meditation, breath work, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.
0: Welcome back, ladies and gentlemen. A happy, happy Saturday morning to all the DFW folks. Ladies and gentlemen, this is Prem Joshi. वैसे मेरा शो है Sunday Pop Station 8 से लेके 10 बजे तक हर संडे को रात को on the same station, Fun Asia 104.9 FM. But आज थोड़ा सा schedule में shift. So welcome to all the new listeners. And there are some old listeners as well who are doing their morning drive. So it's so happy. I'm so happy to talk to everybody. Studio का number है 972-235-5555. As you all know, as I've already mentioned before the commercial break, अभी हमारा pop segment चल रहा है जहाँ पे हम गाने बजाते हैं from the iconic pop genre from the 90s, 2000s and even today. Pehla gana of this segment has already been recommended by Rahul, Tu Hi Tu by Sanjay Maru.

All right, welcome back, ladies and gentlemen. Keep them coming. 972-235-5555 is the studio का number. Make sure they are from the albums and not from the movies. कुछ लोगों ने बहुत सारे romantic गाने भी मुझे recommend कर दिए. शनिवार सुबह सुबह romantic गाने recommend हो रहे हैं, which I'm not against, but यार ये pop segment चल रहा है. 11 से 12 हम बजाएंगे आपके blockbuster गाने. So hold on to it. And next गाना हमें प्रभव ने recommend किया है, which is one of the most iconic 90s पॉप सॉन्ग. और अगर हम 90s पॉप बोल दे तो ये गाना सबसे पहले दिमाग में आ जाता है, पुरानी जीन्स बाय अली हैदर.

0: मौसम चला।
1: यार ऐसा कोई फेयरवेल पार्टी हुआ नहीं है इन द अर्ली 2000s। मे बी इट्स अ स्कूल फेयरवेल, मे बी इट्स अ कॉलेज फेयरवेल, यूनिवर्सिटी फेयरवेल, और उसमें ये गाना ना बजा हो। दिस सॉन्ग इज सो इनग्रेन्ड इन आर कल्चर एंड इट हैज सो मेनी अमेजिंग अमेजिंग मेमोरीज एसोसिएटेड टू इट। आई हैव सो मेनी कॉल्स दैट पीपल आर नॉट इवन रेकमेंडिंग मी सॉन्ग्स, बट दे आर जस्ट सेइंग थैंक यू यार, बहुत अच्छे अच्छे दिन याद आ गए वापस। सो आई अप्रिशिएट ऑल योर कॉल्स लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप एम कमिंग, आई लव टू टॉक। एंड इफ यू हैव एनी स्टोरी एसोसिएटेड टू अ सॉन्ग दैट आई वॉन्ट दैट यू वॉन्ट टू ब्रिंग लाइव ऑन द एयर, मे बी शेयर विद हमारे डैलस वासियों के साथ, प्लीज डू दैट। 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर। कीप द ट्रेन गोइंग बिकॉज वी आर स्टिल प्लेइंग पॉप सेगमेंट सॉन्ग्स एंड नॉट फ्रॉम द मूवीज। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ पे भी आप टाइम पास करते हैं हमें आप फॉलो कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट, एंड वी टॉक टू सम अमेजिंग पर्सनैलिटीज फ्रॉम हेल्थ केयर, लॉ, इमिग्रेशन, डेंटल, मेडिसिन, वेल्थ मैनेजमेंट। हम सभी के साथ बात करते हैं जो हमारी लाइफ को बेटर कर दें यहाँ पे अमेरिका में। ऑल राइट, नेक्स्ट गाना हमें लक्ष्मी ने रेकमेंड किया है एंड दैट सॉन्ग इज मोहब्बत कर ले रे फ्रॉम शामक दावर।

सच एन अमेजिंग सॉन्ग, थैंक यू सो मच लक्ष्मी फॉर रेकमेंडिंग ये ऐसा तड़कता भड़कता गाना. अच्छा हुआ यार रेडियो इज अ सेगमेंट वेर यू कैन ओनली लिसन टू अस. अगर यहाँ पे कैमरा होता आप देखते यार प्रेम क्या डांस कर रहा है यार सुबह सुबह. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, कीप हिम कमिंग. 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर. बहुत सारे लोग ऑन आर ड्राइविंग समवेयर, सम पीपल आर गोइंग टू डू देयर ग्रोसरी शॉपिंग, पीपल आर डूइंग देयर गोइंग फॉर देयर किड्स क्लासेस, सम आर गोइंग फॉर अर्ली लंच, वट एवर यू आर डूइंग यू लिसनिंग टू माई शो प्रेम जोशी का शो ऑन फनेशिया. That's the best part of our lives, right? तो थोड़ा सा इसको pump up करने के लिए हमारे पास एक amazing giveaway यार from the amazing Fun Pizza Kitchen. And if you haven't been, मैं आपको एक reason दे रहा हूँ, because it's an amazing desi style pizza. If you haven't tried it, I highly recommend you do it. मुझे आप सिर्फ एक चीज आपको कर रहा है, okay? पहले तो मैं बता देता हूँ आप क्या जीतने वाले हैं. You're going to be winning a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen by answering a very simple question, all right? The simple question is, मैं अभी एक गाना बजाने वाला हूँ, जो हमारे रमेश शर्मा जी ने हमको recommend किया ये गाना, तो मैं वो गाना बजाने वाला हूँ, आपको सिर्फ मुझे बताना है, ये singer कौन है? Very simple, okay? It's a block, it's a very famous song, जो मैं अब बजाने वाला हूँ, of course from the pop segment, क्योंकि हम rules को तो follow करते हैं, देवियों सजनों. नंबर है 972-235-5555. अगेन 972-235-5555. गाना बज रहा है अभी, आपको मुझे बताना है आर्टिस्ट का नाम, सिंगर का नाम.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
0: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट, फ्रिस्को।
4: How may I help you?
5: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
4: Fear not, we have the perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
6: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
10: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
11: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन, कमिंग सून।
12: बेटा 95% आए?
13: हाँ मम्मी।
12: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
14: मेरा?
12: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
14: वो
15: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: Sadia.
18: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
19: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
20: तुमसे मिलके दिल का है।
19: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

this song was completely shot in the Sin City, which we call Las Vegas, Nevada. Or I think this movie was in 1994, so almost in the 90s, right? And when I got the opportunity to go to Las Vegas first time in 2016, I think, almost 35, 36 years, मुझे लगा वेगस पूरा का पूरा चेंज हो गया होगा. बट आई विल टेल यू, मोस्ट ऑफ द आइकॉनिक स्पॉट्स दैट वर शोन इन दिस सॉन्ग वर स्टिल देयर, राइट? द स्ट्रिप हैजंट चेंज. यस, देयर वर सम न्यू बिल्डिंग्स, देयर वर सम न्यू अपडेट्स, बट वेगस स्टेड द सेम सिंस द 90s एंड इवन टुडे. ऑल राइट, अभी मुझे एक अमेजिंग कॉन्वर्सेशन का एक्सपीरियंस हुआ. अयान, इफ यू आर लिसनिंग टू अस, योर डैड जस्ट कॉल्ड इन एंड टोल्ड मी दैट इट्स योर बर्थडे. आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. दिस इज फ्रॉम योर डैड, फ्रॉम योर मॉम, फ्रॉम योर होल फैमिली. आई होप यू हैव एन अमेजिंग अमेजिंग बर्थडे, एंड दिस सॉन्ग अयान इज जस्ट फॉर यू. ऑल राइट, हैव फन.

0: Welcome back, ladies and gentlemen. I do want to talk about the one and only PMJ Jewels. Dallas, the wait is over. PMJ Jewels is now coming to Frisco, bringing over
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम और कॉल 4697343338 4697343338। माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
6: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
8: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
9: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
10: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन, कमिंग सून।
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Dallas, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए.
15: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल. एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलीशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल एक्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर एवरी एज.
16: लाइव परफॉर्मेंस बाय रागा बॉयज,
15: सैटरडे ऑगस्ट 22nd फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर, टेक्सास. डोर्स ओपन एट 2 PM. एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री. Kaiz Mela 2026.
16: Media Partner, Fun Asia Network.

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

फन की फ्रीक्वेंसी बजे दिन रात।

0: Phoenicia Radio 104.9 FM.
1: आकर
2: ओह शिट दादी।

0: इस रक्षाबंधन चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
1: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
3: हैव यू थॉट अबाउट व्हाट वुड हैपन इफ यू और अ बिजनेस पार्टनर पास्ड अवे अनएक्सपेक्टेडली? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
4: Sign milna mushkil hai, lekin pleno mein जबरदस्त थाना उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
5: ये तारा वो तारा हर तारा।
6: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a 4-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
9: My name is Ritika Anand, Sanyas Nema Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
8: Experience meditation, breathwork, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: अब तेरी बारी।
1: मतलब
0: मेरा फैन बनना?
1: तेरा फैन बनने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही तेरा फैन हूं।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं।
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं।
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं।
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
14: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
15: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
18: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
19: मैं शादी करूँगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूँगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
20: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
21: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
20: इतना सब और प्राइस?
21: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
22: मैं हीरो।
23: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
24: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
25: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन, कमिंग सून।
26: सादिया
0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है।
1: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM onwards at the Credit Union of Texas Event Center, Allen.
25: Tickets available at Ticketmaster. For more info, call 855-360-SHOWS. Exclusive media partner, Fun Asia Network.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
1: ऐसी जगह।
2: अरे झुमका भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए।
3: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
2: अरे

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
3: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट, फ्रिस्को।
4: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
5: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
6: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
7: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
8: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
9: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
10: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
9: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
10: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
9: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
10: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
9: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
12: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
11: सच में सब संभालेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
13: अजी सुनते हो?
14: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
15: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
16: Dallas, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए।
17: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल। एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलीशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल एक्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर एवरी एज।
16: लाइव परफॉर्मेंस बाय रागा बॉयज,
17: सैटरडे ऑगस्ट 22nd फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर, टेक्सास। डोर्स ओपन एट 2 PM। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। Kayad Mela 2026.
16: Media Partner, Fun Asia Network,

0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: हेलो,
2: मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
1: Fikar not. We have the perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
4: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर.
5: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह. कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
6: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
7: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
3: प्लेनो रिचर्डसन, एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन, कमिंग सून.
8: तारा वो तारा हर तारा.
9: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
12: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
13: तुमसे मिलके दिल का है.
12: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beta, 95% aaye?
4: हाँ मम्मी.
3: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
5: मेरा?
3: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
8: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
7: कहाँ? फूडिस्तान इन Aubrey. Fresh grocery, halal meat, puja essentials, live pani puri, catering services, plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vive, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
9: Foodistan in Aubrey. Mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
10: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
11: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
12: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग. और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट. एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
13: जीनी, हुकम मेरे आका. हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
14: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका. लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है.
15: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
14: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
15: और एंटरटेनमेंट,
14: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है.
15: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
14: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
9: हु आर द एम्प्लॉइज योर कंपनी सिंपली कैनॉट अफोर्ड टू लूज? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
16: 90s ke gaane sirf hits nahi, hamari yaadein hain. Aur ab wo legendary awaaz aa rahi hai live to Plano. वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s. सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो. लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल. टिकट्स एट eventbrite.com. मोर इन्फो 214-869-2668. प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप.

0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
2: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
3: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
4: क्या मतलब?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो. 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Floors clean.
8: Check.
7: Windows clean.
8: Check.
7: Kitchen clean.
8: Check.
7: Air ducts clean.
8: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
9: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
16: Dallas, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए.
17: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल. एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलीशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल एक्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर एवरी एज.
18: लाइव परफॉर्मेंस बाय रागा बॉयज,
17: सैटरडे ऑगस्ट 22nd फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर, टेक्सास. डोर्स ओपन एट 2 PM. एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री. Kayad Mela 2026.
18: Media Partner, Fun Asia Network.

खुशामदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक. Today is the 22nd of August, 2026. I hope you guys are doing well, wherever it is that you are. वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट बोली प्यार की का, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं आपके फेवरेट रीजनल लैंग्वेजेस के गाने. यानी कि इस सेगमेंट में उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के गाने नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस के गाने प्ले किए जाएंगे. बोली प्यार की इज ब्रॉट टू यू इन पार्ट बाय ड्रीम होम मॉर्गेज. अगर आपका भी ये सपना है कि आपका अपना घर हो, वेल देन ड्रीम होम मॉर्गेज कैन मेक इट हैपन. नाउ इट्स आल्सो पॉसिबल दैट यू ऑलरेडी हैव अ होम एंड यू आर लुकिंग टू रीफाइनेंस, और परहैप्स यू आर वांटिंग टू मूव इनटू अ बिगर बेटर होम. रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर सिचुएशन इज, दे कैन हेल्प यू आउट एंड मेक इट अ हैसल फ्री प्रोसेस. इनफैक्ट मैंने भी अपना घर ड्रीम होम मॉर्गेज के थ्रू खरीदा है, सो आई एम वन हैप्पी सैटिस्फाइड कस्टमर व्हेन इट कम्स टू मॉर्गेज. गिव देम अ कॉल एट 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com. शुरू करते हैं आज का सेगमेंट विद ए तेलुगु ट्रैक. आई होप यू गोना लाइक माय सिलेक्शन.

0: हमारे इस सेगमेंट में तो सिर्फ दो ही तेलुगु गाने प्ले किए जाएंगे, बट इफ यू लव तेलुगु म्यूजिक यू नीड टू ट्यून इन टू आवर सिस्टर स्टेशन यानी के रेडियो संगम. 3:40 यू आर लिसनिंग टू दिल से. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, एंड दिस इज बोली प्यार की, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं आपके फेवरेट रीजनल लैंग्वेजेस के गाने. 9722355555 हमारे स्टूडियो का नंबर है, बट प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड के 5 से 10 मिनट का होल टाइम है. ऑलराइट, चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनीश रेडियो पर आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: हेलो
0: जी, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: जी हाँ अमरीन जी, कैसे हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ सुहेल, आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, ठीक है.
0: बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आज?
1: एक सेकंड, गाना बोले मैडम.
0: हेलो मरियम, हाउ आर यू?
2: I'm good, how are you?
0: I'm doing well. बताइए कौन सा गाना?
2: तुम्हाके छेड़े আমি কি নিয়ে বাঁচব.
0: তোমাকে ছেড়ে
2: Thank you.

0: हमारे बहुत प्यारे लिसनर्स मरियम और सुहेल की रिक्वेस्ट पर सुन रहे थे हम ये बांग्ला सॉन्ग. होप यू गाइस एंजॉयड इट. जैसे कि आप जानते हैं हमारे इस सेगमेंट में हम हर लैंग्वेज के सिर्फ दो ही गाने प्ले करते हैं. सो फार वी हैव डन वन सॉन्ग फॉर तेलुगु एंड वन सॉन्ग फॉर बांग्ला. एंड द बेस्ट पार्ट इज यू नो देयर स्टिल टाइम फॉर अस टू प्ले all different languages from the Indian subcontinent. 972-235-5555 studio ka number hai. Once again, remember, the whole time can be anywhere from 5 to 10 minutes. Rest assured, if your call stays connected, your request will be played. All right, chalte hain next patiently waiting caller ki taraf. Fanisha Radio, aap on air hai, aapka naam?
1: Hello.
0: Ji, aap on air hai, aapka naam?
1: जी चिंतन.
0: जी चिंतन बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: गुजराती.
0: ऑलराइट, आपके गाने का क्या नाम है?
1: तू चाल तो रह जे.
0: तू चाल, आई एम सॉरी,
1: चाल तो.
0: तू चाल तो आगे
1: रह जे.
0: रह जे. ओके, यानी कि तू चल तो सही. इज इट लाइक दैट?
1: चलता रहे तू.
0: ओके, किशोर कुमार ने गाया है गाना?
1: हाँ जी.
0: ऑलराइट, आई विल प्ले दैट फॉर यू. और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें?
1: मैं मिकिनी से.
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. ये रहा आपका गुजराती सॉन्ग.

0: यू नो, किशोर साहब की आवाज की खासियत क्या है, वो किसी भी भाषा में किसी भी जुबान में गाना गाएं सुनकर अच्छा लगता है। बीन आई बी ऑनेस्ट राइट, मुझे गुजराती नहीं समझ में आती, लेकिन फिर भी मैंने इस गाने के सुर को, उनकी आवाज को, इस मेलोडी को बहुत एंजॉय किया। एंड आई होप यू डिड टू। यू आर लिसनिंग टू दिल से ऑन 104.9 FM। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सैटरडे आफ्टरनून सो फार। गर्मी तो बहुत है, पर आई होप यू आर इनडोर्स। 92 डिग्रीज फारेनहाइट इज अ करंट टेम्परेचर। टुडेज हाई 104। यस, द थ्री डिजिट temperatures are continuing. Today's low 87. Kal bhi kuch aise hi garma garam rahega mausam, with highs of 105 and a low of 86 degrees Fahrenheit. You're listening to Boli Pyar Ki. Aaiye chalte hain next caller ki taraf. Fanisha Radio, thank you so much for holding. Aap on air hain, aapka naam?
1: Hello, do you know English?
0: I'm sorry? Yes, I do.
1: English.
0: Which language song did you want to request?
1: Kannada.
0: All right. And what's the name of your song?
1: Saja Samachara.
0: Okay. Can you say that a little slower, one word at a time?
1: Saja Samachara.
0: Aaj? Is it with an A?
2: Taja Samachara.
0: Aaja Samachara?
2: Taja.
0: Taza Samachara. Okay, Taza. Is that latest news, right?
2: Yes.
0: Is that what it means? Arre wah, yani ki mujhe bhi Kannada aati hai. Very good. All right, I will. I think this song might be even called something else. Anyway, no worries. And where are you calling us from?
1: Plano.
0: Plano. Thank you so much. Here is your Kannada song.

0: वाज ताजा समाचार कन्नड़ा सॉन्ग प्ले किया हमने आपके लिए. होप यू गाइस एंजॉयड इट. यू नो व्हाट आई लव अबाउट बोली प्यार की, आई डोंट नो कि कौन सा गाना नेक्स्ट प्ले होगा, बिकॉज यू गाइस आर द वंस हु आर ड्राइविंग दिस शो एंड इट्स ऑलवेज अ नाइस सरप्राइज फॉर मी व्हेन इट्स अ ग्रेट सॉन्ग दैट इज रिक्वेस्टेड. वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू गाइस, अगर आप होल्ड पर हैं तो या तो आपको मेरी आवाज सुनाई देगी और यू बी लिसनिंग टू ऑन होल्ड म्यूजिक. रिगार्डलेस अगर आपको कुछ भी सुनाई दे रहा है एज इन एनी टाइप ऑफ म्यूजिक और माई वॉइस, दैट मीन्स यू आर ऑन होल्ड एंड योर कॉल इज कनेक्टेड. यू आर इन क्यू एंड योर कॉल विल बी आंसर्ड इन द ऑर्डर इट वॉज रिसीव्ड. सो प्लीज डू नॉट डिसकनेक्ट, डू नॉट हैंग अप, अदरवाइज यू आर गोना गो बैक इन क्यू और आपको और भी ज्यादा वेट करना पड़ेगा. सो आई डोंट वॉन्ट दैट. आई एम गोना गो अहेड एंड टेक द नेक्स्ट कॉलर ऑन एयर. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम?
1: हेलो, नमस्कार जी. नमस्कार, वेद प्रकाश पांडे है.
0: आपका नाम क्या है?
1: वेद प्रकाश पांडे.
0: ऑल राइट पांडे जी, बोलिए कौन सा गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: मैं गाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भोजपुरी में एक फोक सॉन्ग टाइप होता है, उसको बोलते हैं कचरी.
0: आपकी है? आवाज तो... कट रही है, फिर से बोलिए भोजपुरी गाने का नाम.
1: भोजपुरी गाने का नाम है कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घिर आइल ओ नंदी.
0: कैसे खेलन जैबो सावन में कजरिया. हाय हाय, नाइस. ओके,
1: ठीक है. ये सावन के महीने में एक्चुअली गाया जाता है. कजरी
0: सावन तो नहीं हो रहा है, यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ रही है पांडे जी. होपफुली गाना सुन के बारिश होने लगेगी तो फिर बड़ा अच्छा.
1: इसलिए मैंने कहा.
0: कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमको?
1: वैसे तो मैं मेलिसा में रहता हूँ, लेकिन अभी फ्रिस्को जा रहा हूँ सुंदरकांड करने के.
0: ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. ये रहा आपका भोजपुरी सॉन्ग.

0: अ वेरी स्वीट भोजपुरी सॉन्ग इंडीड. बताइएगा मुझे, बारिश शुरू हुई बाहर के नहीं गाने के बाद? फनीश रेडियो, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम फनीश
1: Hello?
0: जी? आप ऑन एयर हैं, जल्दी से बताइए क्या नाम है आपका और कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: मेरा नाम वंदना है, मैं ओडिया गाना प्ले करना चाहती हूँ.
0: ऑल राइट, क्या नाम है आपके गाने का?
1: पुचली गली सेतन पाली.
0: I'm sorry, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही. Did you say पिछली गली?
1: पुचुकी.
0: ओके, पुचुकी गली. ऑलराइट, लेट मी फाइंड दैट. इसका दैट्स एन इंटरेस्टिंग वर्ड. व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज पुचुकी मीन?
1: बबली चिक.
0: ओके, ऑलराइट, साउंड्स गुड. कहां से कॉल कर रहे हैं आप हमको?
1: मैकेनी से.
0: ऑलराइट, थैंक यू.

0: ballo.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
7: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
8: अरे सारे तो सेम है।
7: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
8: ओ हाँ, ये तो अलग है।
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
10: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
11: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
12: तुमसे मिलके दिल का है।
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
13: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
15: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
16: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
17: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
18: फैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
17: विजिट फैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन। Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements.
9: Protect your business, your partners and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax or investment advice.
0: अरे वो केक आया क्या?
19: डीजे कौन हैंडल करेगा?
0: डेकोर वाले को कॉल किया.
19: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया.
0: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया.
19: ऑसम इवेंट्स?
0: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट. अमरीन हसनात एंड द टीम विल हैंडल एवरीथिंग.
19: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म.
0: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ.
9: कॉल नाउ एट 214-725-7466. That's 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
20: जी हाँ, मेरी ही बात हो रही थी. दैट्स मी, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. नाउ इफ यू हैव डन ऑल द प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन योरसेल्फ एंड यू जस्ट नीड समवन टू बी द प्रोफेशनल एमसी एट योर इवेंट, यू कैन कॉल मी फॉर दैट एज वेल. 214-725-7466 है मेरा नंबर. Obviously, इस वक्त कॉल मत कीजिएगा since I am on air, but you can call me later. It is 4:05 and you're listening to Dil Se. सेगमेंट पेश किया जा रहा है बोली प्यार की, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं रीजनल लैंग्वेजेस के गाने. हर लैंग्वेज के हम सिर्फ दो ही गाने प्ले कर पाते हैं. लेट मी गिव यू अ क्विक रीकैप ऑफ ऑल द लैंग्वेज सॉन्ग्स दैट वी हैव प्लेड सो फार. लेकिन अभी भी गुंजाइश है बिकॉज वी हैव नॉट डुप्लीकेटेड एनी लैंग्वेजेस येट. तेलुगु, बांग्ला, गुजराती, कन्नडा, भोजपुरी, उड़िया गाने सो फार सुने हैं. वी आर गोना फाइंड आउट इन जस्ट अ मिनट कि अगला गाना कौन सी लैंग्वेज में होगा. दिस पार्ट ऑफ आवर शो ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क Jewelers. Well, they've got the Festival of Diamonds going on. Yani ke 25% off on diamond value and making charges plus 0% deduction on the exchange of all old gold above 18 carat. So come celebrate this season with Timeless Sparkle at Tanishq. Now, their store is located in Frisco. It is 4:06. Let's go ahead and move on to our next caller. Fun Asia Radio, thank you so much for holding. Aap on air hai, aapka naam?
21: Hello.
20: Hello, ji. Aap on air hai, aapka naam?
21: My name is Kezia.
20: All right. Aur kaun si language ka gana request karna hai aapne?
21: I'm not sure. Mujhe language ka utar nahi pata. But I love to hear the song.
20: Oh, okay. Thank you so much.
21: The song is...
20: Okay.
21: Baron.
20: Okay, aapki awaaz kat rahi. I'm so sorry, I'm not able to understand. Did you say you don't know the language and you just want to request a song?
21: Yeah.
20: Okay, so what is the song?
21: Is
20: go ahead
21: possible?
20: And give me the words. I mean, but you're going to have to tell me the
21: Baron.
20: Words. What is it called?
21: Yeah, Baron. Baron.
20: Baron. Okay.
21: Yeah.
20: Is it a Hindi song?
21: It's kind of Hindi, but the words are quite kind of like a little bit different.
20: Okay.
21: Yeah.
20: Okay. Is it a Bangla song?
21: Not a Bangla song.
20: Okay.
21: Let me check.
20: Yeah, I think it seems like it's more Hindi. And, you know, in this segment, we don't do Hindi or, you know, English, Urdu songs. So it has to be a specific regional language song.
21: Can I request for, like, another song?
20: A what song?
21: Another song.
20: Canada?
21: It's called... No. Can I request a Pakistani song?
20: Okay. It has to be a regional language. It can be Pakistani or Indian. Like it can be Pashto, Punjabi, Sindhi, Gujarati. Bataiye kya, kaun si language hai?
21: Okay. Language ka naam Khwar hai.
20: Kya naam hai?
21: Song hai Khwar.
20: Khwar? Okay.
21: Yeah.
20: I'm sorry, क्या है गाने का नाम? मैं गलासा Okay. All right, let me it's kind of hard, you know, when we don't know the language.
21: It's kind of a
20: मैं गलासा what was the third word? Okay.
21: Yeah.
20: All right. Okay. I think I got it. So here it is. Thank you so much for your call. Here it is. So the language is Khwar. I never heard of that. That is so amazing. Never heard of this. So very entertaining, very interesting.

0: Alright, I'm sure you must be curious too कि ये कौन सी भाषा है, कौन सी जुबान है. इस जुबान को कहते हैं खोवार और ये चित्राल रीजन में बोली जाती है, which is northwest Pakistan. So very close to Gilgit and Balistan area. So very interesting. Thank you for requesting that song. Once again, if you've just tuned in, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से और ये है सेगमेंट बोली प्यार की, जिसमें हम उर्दू, इंग्लिश और हिंदी के गाने नहीं प्ले करते, बल्कि फोकस करते हैं हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की रीजनल लैंग्वेजेस पर. हर लैंग्वेज के हम सिर्फ दो ही गाने प्ले करते हैं एंड यू कैन रिक्वेस्ट एनी लैंग्वेज सॉन्ग दैट यू लाइक बाय कॉलिंग 972-235-5555. बट प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट द होल टाइम रेंजेस एनीवेयर फ्रॉम 5 to 10 मिनट्स. सो अगर आपके पास वक्त नहीं है या आपके पास पेशेंस नहीं है तो यू मे वॉन्ट टू स्किप इट. आई डू हैव अ लॉट ऑफ पीपल ऑन होल्ड राइट नाउ, प्लीज स्टे ऑन द लाइन. Your call will be answered in the order it was received. Panesha Radio, thank you so much for holding. Aap on air hai, aapka naam?
1: Hi, my name is Mansi.
0: Hello, Mansi. How are you?
1: I'm good. How are you?
0: I'm doing great. Bataiye, kaun si language ka gana request karengi?
1: So, mujhe sunna hai Tamil song and it's from the movie Boys and it's called Dating.
0: It's called Boys?
1: The movie is Boys.
0: और गाने का नाम?
1: गाने का नाम है Dating.
0: Dating जैसे लोग करते हैं dating, date पे जाते हैं, वो वाला dating.
1: Yes.
0: Okay, ठीक है. All right. Let me find that and play it for you. और आप कहाँ से call कर रही हैं हमें?
1: मैं Northwick से call कर रही हूँ.
0: Thank you so much. Here's your Tamil song.

0: I'll be honest, इस गाने में मुझे इंग्लिश ज्यादा और तमिल कम सुनाई दे रही है. खैर कोई बात नहीं. Once again, I want to remind our listeners कि हम ये सेगमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम रीजनल लैंग्वेजेस पर फोकस कर सकें, ताकि आपकी जो मातृभूमि, मतलब मातृभूमि आपकी जो माँ बोली है, जो आपकी अपनी भाषा है, उसमें हम आपको गाने सुनवाएं. एंड आई अंडरस्टैंड कि बॉलीवुड में, लॉलीवुड में, टॉलीवुड में बहुत से ऐसे गाने हैं जिनमें यू नो कंबाइन कर दिए जाते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्टफ. सो लेट्स फाइंड यू नो सॉन्ग्स दैट आर मोर ट्रेडिशनल एंड वेरी ऑथेंटिक टू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. मैं ये नहीं कह रही फोक सॉन्ग्स रिक्वेस्ट करें, लेकिन एटलीस्ट यू नो वो लैंग्वेज तो क्लियरली हमें सुननी चाहिए, राइट? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. लेट्स सी उन्हें क्या सुनना है. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम? हेलो फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है? एंड आई नो यू बीन ऑन होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. हेलो, प्लीज स्पीक अप, अदरवाइज आपकी टर्न चली जाएगी. ओके Okay, I'll count till three and move on to the next. One, two, three. I feel so bad because, you know, call connected and I can see that. All right, moving on. Fanisha Radio, aap on air hai, aapka naam?
1: Hello?
0: Ji, aap on air hai, aapka naam?
1: Manoj.
0: Ji, Manoj. Boliye, kaun si language ka gana request karenge?
1: It's actually Rajwanshi song from Nepal.
0: Okay, so Nepali song?
1: Yeah.
0: Okay, aur gaane ka kya naam hai?
1: फेसबुकेर जालत.
0: इस बुकेर
1: जालत.
0: जालत, ओके.
1: इट्स सिंगर इज बाल बहादुर राजवंशी.
0: ओके, मे बी आई एम नॉट राइटिंग इट प्रॉपरली, आई एम नॉट फाइंडिंग दैट सॉन्ग. सो नेपाली इस बुकेर जालत, दैट्स व्हाट यू सेड?
1: यस, फेसबुक, फेसबुक के ई आर, फेसबुकेर.
0: The first word is like Facebook, like the social media?
1: Yes. Facebook and K-E-R.
0: Okay. Okay, interesting. Par gana to Nepali mein hai na?
1: Yeah, it's from Nepal, actually Rajwanshi song.
0: Yeah, but it's the language is Nepali, right? Not Hindi, not English, right?
1: No, it's not proper Nepali. It's our own language.
0: Okay, yeah, that's language. Fine. As long as it's yeah. authentic. Okay, sounds good. Yeah. And where are you calling us from, sir?
1: Ulis.
0: Ulis. All right, thank you so much. Here is your song.

0: अब अगर सेल्फी पे गाना हो सकता है तो फेसबुक पर क्यों नहीं. That was a sweet, sweet Nepali song. I hope you guys enjoyed it as much as I did. 21 minutes past 4, you're listening to Dil Se on 104.9 FM. Now, Tandoori Flame, which is in Garland, is the new flavor destination for all spice lovers. Kyunki mazedar tandoori platters, curries, और बाकी आपकी तमाम नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे विद अ होम स्टाइल पंच. दैट्स राइट, कबाब हो या नान हो या कोई भी करी हो, यू फाइंड इट ऑल हियर, तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट लोकेटेड इन गार्लैंड. ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. लेट्स सी उन्हें कौन सी लैंग्वेज का सुनना है गाना. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम. हेलो.
1: Hi, can
0: yes,
1: you hear me?
0: I can hear you. आपका नाम?
1: रूपा.
0: जी रूपा, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: I'm going to request a Kannada song.
0: Kannada song, all right. That's going to be our second Kannada song today. क्या नाम है आपके गाने का?
1: Dwapara.
0: Dwapara?
1: Uh-huh.
0: That's one word?
1: Yes.
0: Okay, Dwapara, all right. क्या मतलब है इस वर्ड का?
1: It's the name of the city.
0: Okay.
1: So yeah, it's a Krishna's Dwapara yuga that you call. Yeah.
0: Okay, thank you. Kahan se call kar rahi hain aap hame?
1: Frisco.
0: All right, thank you. Here's your song.

0: That was our second Canada song for today. यानी कि we won't be taking any more requests for Canada songs. Let's see हमारे अगले कॉलर को सुनना है कौन सी लैंग्वेज का गाना. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम? हेलो, there's a lot of external noise. जी, आपका नाम क्या है?
1: संदीप.
0: जी संदीप, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: छते राजस्थानी गाना है, चौमासो.
0: ओके,
1: और
0: चौमासो,
1: और ये हाँ चौमासो, CHOMASO.
0: ओके,
1: और ये वीना म्यूजिक, वीना म्यूजिक करके एल्बम है उनका है.
0: वीना म्यूजिक, ओके, एंड इट्स अ सॉन्ग राइट, नॉट जस्ट इंस्ट्रूमेंटल.
1: इट्स अ सॉन्ग.
0: ओके,
1: इट्स अ सॉन्ग. वीना, VEENA, वीना.
0: गॉट इट, लेट मी फाइंड दैट एंड प्ले इट फॉर यू. और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें?
1: गाड़ी से,
0: फ्रिस्को. फ्रिस्को से. ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर कॉल.

0: सुन रहे थे हम ये राजस्थानी सॉन्ग ऑन बोली प्यार की. वी गोना गो अहेड एंड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर फनीशा रेडियो. आप ऑन एयर हैं, आपका नाम? हेलो फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम? प्लीज स्पीक अप, आई कैन हियर दैट द कॉल इज कनेक्टेड. फनीशा रेडियो, यस, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: बिंदिया
0: जी, बोलिए. कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: वाला मावो ने गुजराती.
0: ओके, गुजराती. ऑलराइट, दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकंड गुजराती सॉन्ग टुडे. वालम आयो ने, इज दैट व्हाट यू सेड?
1: वालम आवो ने.
0: आवो ने, ओके, ठीक है. हम प्ले करेंगे आपके लिए गाना. आप कहाँ से कॉल कर रही हैं हमें?
1: प्लेनो.
0: प्लेनो से. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. ऑलराइट फोक्स, आई एम गोना गो अहेड एंड प्ले दिस सॉन्ग राइट आफ्टर द ब्रेक. वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू कि जब आप होल्ड पे रहते हैं तो आपको म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है. अब वो या ऑन होल्ड म्यूजिक होगा या वो गाना होगा जो इस वक्त प्ले हो रहा है. एंड बेयर इन माइंड दैट Your call is answered in the order it's received. Agar aap disconnect kar dete hain, then you have to wait even longer for your song to be played.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Raksha Bandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
3: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
6: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
1: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
6: कहाँ?
7: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
8: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
11: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
12: इतना सब और प्राइस?
11: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं हीरो।
14: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
15: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
16: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन कमिंग सून।
17: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक, they're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
18: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांट के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिसोर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांट। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 2148377147 पर, या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
11: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

0: लवनी भवाई फिल्म का गाना वालम आवो ने सुन रहे थे आप. रिक्वेस्ट थी कमर्शियल ब्रेक से पहले. यू जस्ट ट्यून्ड इन. खुश आमदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जहाँ भी हैं खैरियत से हैं. आप सुन रहे हैं हमारा सैटरडे का स्पेशल सेगमेंट बोली प्यार की, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस के गाने आपको सुनवाते हैं. नो हिंदी, नो उर्दू एंड नो इंग्लिश. इट इज 37 मिनट्स पास्ट 4 ऑन दिस 22nd ऑफ ऑगस्ट 2026. सो फार दो गुजराती गाने हो गए, यानी कि अब हम और गुजराती गानों की रिक्वेस्ट नहीं ले पाएंगे. कनाडा के भी दो गाने प्ले कर चुके हैं, यानी कि नो मोर कनाडा सॉन्ग्स ईदर. इसके अलावा वी प्ले तेलुगु, भोजपुरी, उड़िया, खोवार, तमिल, नेपाली एंड राजस्थानी सॉन्ग. आइए देखते हैं कि अगला गाना कौन सी लैंग्वेज में होगा. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: हेलो जी, मेरा नाम अनु.
0: जी अनु, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: मलयालम गाना.
0: मलयालम सॉन्ग. ऑलराइट, क्या नाम है आपके गाने का?
1: मलरे प्रेम मूवी का.
0: मलरे, इज दैट व्हाट यू सेड?
1: मलरे.
0: ओके, All right, I will play that. और फिल्म का नाम आपने बोला प्रेमम, राइट?
1: करेक्ट.
0: और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं हमें?
1: फ्रिस्को.
0: All right, thank you so much for your call. ये रहा हमारा मलयालम का पहला गाना.

0: I hope you guys enjoy this Malayalam song. This part of Boli Pyar Ki is brought to you by AG FinTechs. Now, it happens to be one of the fastest growing tax firms in the US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and they get you ready for the future. So call them 469-9429-888 or visit agfintechs.com. All right, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: हेलो.
0: हेलो जी, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: उपेंद्र.
0: आई एम सॉरी, क्या नाम बताया?
1: उपेंद्र.
0: भूपेंद्र, ऑल राइट, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: तमिल.
0: तमिल सॉन्ग, ऑल राइट, दैट्स गोना बी आवर सेकंड तमिल सॉन्ग टुडे. क्या नाम है आपके गाने का? I'm sorry, did you say akka kya?
1: Nakamuka.
0: What is the first word? Can you spell it for me?
1: Sure.
0: Boliye, spell kijiye first word.
1: N-A-A-K-K-A. Naka.
0: All right. I think I got the song. All right. Thank you so much for your call. Kahan se call kar rahe hain aap hame?
1: Pleno.
0: Pleno. Thank you for your call, Bhupinder. Here is your song.
2: மாடு சத்தா மனுஷன் தின்னா தோலை வச்சு மேல கட்டி அர்ற நாக்க முக்க நாக்க முக்க நாக்க முக்க மாடு சத்தா மனுஷன் தின்னா தோலை வச்சு

0: And that was our second Tamil song, Nakka Mukka. Hope you enjoyed it. 44 minutes past 4, chalte hain next caller ki taraf. Fun Isha Radio, aap on air hain, aapka naam?
1: Hello.
0: Hello, ji, aap on air hain, aapka naam?
1: Malik.
0: Hello, Malik sahab, kya haal hai aapka?
1: जी ठीक हूँ.
0: आई नो आप हमेशा यूएस में यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रहे होते हैं. आज कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें?
1: सिनसिनेटी, ओहायो.
0: ऑलराइट, नाइस. वेल, आई एम सो ग्लैड दैट यू टेक अस एवरीवेयर यू गो थ्रू द ऐप. आई रियली अप्रिशिएट योर लिसनरशिप. बताइए, आप कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: पंजाबी गाने की गुंजाइश है
0: जी, बिल्कुल. बताइए, नहीं एक भी नहीं प्ले हुआ. बताइए कौन सा गाना?
1: पंजाबी हदीका क्यानी क्या है, बूहे बारियां.
0: बूहे बारियां. ऑलराइट, आई विल प्ले दैट फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. और ये रहा आपका गाना. एंड प्लीज डू ड्राइव सेफली एंड ऑलवेज कीप फन एशिया विथ यू. आपका हम सफर, फन एशिया रेडियो 104.9 FM.

0: अधिका ज्ञानी की आवाज में सुन रहे थे आप ये पंजाबी गाना मलिक साहब की फरमाइश पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, थैंक यू फॉर होल्डिंग। आपका नाम?
1: हाय, माय नेम इज सोनल।
0: जी सोनल, बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना?
1: जी मुझे सुनना है मराठी लैंग्वेज का गाना।
0: मराठी सॉन्ग, ऑलराइट। क्या नाम है आपके गाने का?
1: दिस इज फ्रॉम मुंबई, पुणे मुंबई मूवी।
0: ओके, गाने का नाम क्या है?
1: मिस का करेना।
0: मिस का करेना,
1: का करेना,
0: का परेना, ऑलराइट। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दैट सॉन्ग। ओके, मुझे ओके, फिल्म का नाम फिर से बताइए, क्या था? मुंबई टू क्या था?
1: मुंबई पुणे मुंबई।
0: ओके, मुंबई पुणे मुंबई, एंड द सॉन्ग यू सेड इज मे बी इट्स कॉल्ड समथिंग एल्स। क्या गाने का कोई और नाम हो सकता है? क्योंकि जो नाम आप बता रही हैं वो तो पुल अप नहीं हो रहा है। सो कुड इट बी कॉल्ड समथिंग एल्स? कुड इट बी कॉल्ड द कड़ी टू और काकलेना? डिड यू से काकलेना?
1: यू कैन प्ले दैट टू।
0: आई गॉट काकलेना, आई थॉट मुझे कुछ और सुनाई दिया था, तो ओके ठीक है, आई फाउंड इट। और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं हमें?
1: जी मैं प्रिंसटन से बात कर रही हूँ।
0: थैंक यू फॉर योर कॉल, हियर इज योर मराठी सॉन्ग, एंजॉय।

0: सुन रहे थे आप ये रोमांटिक सा मराठी सॉन्ग. होप यू एंजॉयड इट. आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम? हेलो फनीशा रेडियो पर आप ऑन एयर हैं. प्लीज स्पीक अप और आपकी आवाज बहुत मफल दूर से आ रही है. बोलिए.
1: हेलो.
0: जी जी बोलिए, क्या नाम है आपका? ओके, आई एम सो सॉरी. कैन यू प्लीज टेक मी ऑफ स्पीकर और ब्लूटूथ, बिकॉज़ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग.
1: 14 अगस्त मेला.
0: ओके, व्हाट लैंग्वेज इज दैट? हेलो.
1: हेलो.
0: यस, व्हाट लैंग्वेज सॉन्ग डिड यू वांट?
1: नो, आई
2: वांट टू नो.
0: हेलो.
2: I want to know 14 August Mela.
0: Oh, okay. I'm sorry. I'll take you off air and give you that information. Phanisha Radio, aap on air hai, aapka naam?
3: Hello?
0: Ji, aap on air hai, sir. Aapka naam?
3: Mujhe ek Marathi gana sunna hai.
0: Marathi song. All right. That's going to be our second Marathi song today. Boliye, kya naam hai aapke gaane ka?
3: मन उधान वारे चे.
0: मन उधान वारे चे. ओके,
3: आगे भाई आ रहे चा, मूवी का नाम है.
0: ओके, नो प्रॉब्लम. आई थिंक आई गॉट इट. हियर इट इज. और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें?
3: मैं प्रॉस्पर से.
0: ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर कॉल. ये रहा आपका गाना.

1947 अर्थ से लिया गया ये गाना सुखविंदर सिंह की आवाज में सुन रहे थे आप, जो आमिर खान और नंदिता दास पर पिक्चराइज किया गया था। आइए अब चलते हैं सरफरोश फिल्म के इस गाने की तरफ। ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी।

सरफरोश फिल्म का ये गाना सुन रहे थे आप अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। आज आमिर खान के फिल्मी गीत आपको सुनवा रहे हैं।

मनीषा कोइराला और आमिर खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में सुन रहे थे आप. इट इज 15 minutes past 5 एंड ये है प्रोग्राम दिल से, ब्रॉट टू यू इन पार्ट बाय वनेसा इवेंट्स. नाउ दिस इज अ फुल सर्विस इवेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपनी जो आपकी हर किस्म के वेंडर के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, मैनेज करेगी एंड दे गेट यू द बेस्ट डील्स पॉसिबल. इन फैक्ट दे गेट यू डिलिशियस केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय द रेनाउंड बसेरा ग्रैंड रेस्टोरेंट. सो call Hari Basera to get more information. 469-442-8770. Khan special continue karte hain aur chalte hain lagan film ke is gaane ki taraf.

And from the film Dil Chahta Hai, that was a title track. Even though इस फिल्म में आमिर खान के साथ अक्षय खन्ना और सैफ अली खान भी थे, I think आमिर खान had a more powerful role in this movie, which came out in 2001. 2005 में रिलीज हुई मंगल पांडे. लेकिन जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो as such आमिर खान पे पिक्चराइज नहीं है. It was actually an item song जो कि रानी मुखर्जी पर पिक्चराइज किया गया था for the film मंगल पांडे.

तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी। सुन रहे थे आप रानी मुखर्जी पर पिक्चराइज किया गया ये गाना कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल, विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। दिस इज अमरीन हसनात एंड यू आर लिसनिंग टू द खान स्पेशल ऑन दिल से। और आज फीचर कर रहे हैं हम आमिर खान के फिल्मी गीत। मंगल पांडे के बाद आइए सुनते हैं ये टाइटल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म रंग दे बसंती।

दलेर मेहदी की आवाज में सुन रहे थे आप रंग दे बसंती. आई होप यू गाइस एंजॉय दैट. आई वांटेड टू रिमाइंड यू अबाउट द शॉक था रक्षा बंधन कॉन्टेस्ट दैट इज गोइंग ऑन, जिसमें कि आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके अपनी कहानी व्हाट्सएप कर सकते हैं 2148377147. नाउ यू नीड टू टॉक अबाउट योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विथ योर ब्रदर और सिस्टर. डेली प्राइजेस हैं शॉकटा कैसीनो की तरफ से, इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजोर्ट स्टेज, और जो ग्रैंड प्राइज है दैट इज एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट शॉकटा कैसीनो एंड रिजोर्ट इन डुरंड. सो डोंट वेट, डू इट राइट अवे 2148377147. And then once you've sent it, call me and share your information so I make sure that we look out for your entry. All right, ab chalte hain agle gaane ki taraf. This one's from the film Fana, another Aamir Khan blockbuster film.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
2: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
3: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%। सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 96641।
4: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
5: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
6: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन, कमिंग सून।
7: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज प्री IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
8: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
9: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
10: Are you sun, ye astrologer bol raha 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Dallas, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए।
17: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल। एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलीशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल एक्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर एवरी एज।
18: लाइव परफॉर्मेंस बाय रागा बॉयज,
17: सैटरडे ऑगस्ट 22nd फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर, टेक्सास। Doors open at 2 p.m. Entry or parking bilkul free. Kayad Mela 2026.
19: Media partner, Fun Asia Network.
1: देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई

And that was Bam Bam Bole, taken from the film Tare Zameen Par. You are listening to the Khan Special on 104.9 FM, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं आमिर खान की हिट फिल्मों के गाने. जैसा कि आप सभी जानते हैं, इवन दो ही स्टार्टेड बैक इन 1973 एज अ चाइल्ड स्टार, उनकी पहली हिट फिल्म थी कयामत से कयामत तक, विच वॉज रिलीज इन 1988. एंड सिंस देन देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस सुपर स्टार. 88, 89, 90, 91, 92, 93, तकरीबन हर साल में उन्होंने मल्टीपल मूवीज में काम किया. ना सिर्फ मूवीज में काम किया, बल्कि तकरीबन उनकी हर फिल्म ही हिट थी, हिट के बाद हिट थी. देर वॉज ओनली वन टाइम आई थिंक इन बिटवीन वेयर ही डिडंट हैव एनी मूवीज, विच इज बिटवीन 2001 और 2004 के दरमियान, यानी कि 2002 और 2003. दैट्स वन ही टुक अ ब्रेक आफ्टर दिल चाहता है, वरना उसके बाद भी तकरीबन हर साल उन्होंने किसी ना किसी फिल्म में जरूर काम किया है या फिल्म प्रोड्यूस की है. लेट्स गो अहेड एंड मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट फिल्म टाइटल्ड गजनी. सुनते हैं ये गाना.

जावेद अली की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना जो कि आमिर खान और आसिन पर पिक्चराइज किया गया था. आमिर खान हैज वर्क्ड विद सम ऑफ द लीडिंग लेडीज ऑफ बॉलीवुड इंक्लूडिंग करीना कपूर इन दिस नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म थ्री इडियट्स.

करीना कपूर और आमिर खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना आप सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में सुन रहे थे, टेकन फ्रॉम द फिल्म 3 Idiots. और उसके बाद एक फिल्म जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, आई गेस आई एम इनटू हॉरर, आई एम इनटू थ्रिलर एंड आई एम इनटू ए स्टोरी लाइन मोर देन कमर्शियल मूवीज, जैसे कि ये 3 Idiots. सो हियर इज अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी तलाश, वन ऑफ माई फेवरेट आमिर खान फिल्म्स.

में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म तलाश, जो कि आमिर खान पर पिक्चराइज किया गया था। दिस मूवी रिलीज्ड इन 2012। एंड देन केम आउट धूम 3, अनदर ब्लॉकबस्टर, रिलीज्ड इन 2013।

कैटरीना कैफ और आमिर खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना मोहित चौहान की आवाज में सुन रहे थे आप, टेकन फ्रॉम द फिल्म धूम 3। और फिर आई पीके जिसने सबका दिल जीत लिया।

0: दिलेर मेहदी की आवाज में सुन रहे थे आप आमिर खान की फिल्म दंगल का ये टाइटल ट्रैक. इट इज 54 मिनट्स पास्ट 5 ऑन दिस सैटरडे इवनिंग एंड यू आर लिसनिंग टू दिल से, जिसमें आज पेश किया जा रहा था द सेकेंड पार्ट एंड एज द फाइनल पोर्शन ऑफ आर खान स्पेशल. एटलीस्ट आमिर खान का ये था पार्ट 2. एंड Just wanted to remind you guys, Hoko naam bahut hi popular hai India mein when it comes to chana puri, sandwiches, curries and of course the famous Hoko cold coco. और अब ये नाम यहाँ पहुँच चुका है, यानी कि इंडिया से US में, राइट हियर इन फ्रिस्को. दे हैव अ लोकेशन ऑन 2693 प्रेस्टन रोड. सो अब आपको होको के मज़ेदार खाने इंजॉय करने के लिए यू डोंट हैव टू गो टू इंडिया, यू कैन एंजॉय इट राइट हियर इन फ्रिस्को. And we are giving away Aloo Tikki Chaat right now. I'm going to play the last song of today and all you have to do is tell me the name of the movie and the first person to call to tell me that gets to win this, okay? So, main ab Aamir Khan segment ka aakhri gaana play karne ja rahi hoon, jismein aapko Aamir Khan ki awaaz bhi sunne ko milegi. आपने सिर्फ मुझे मूवी का नाम बताना है. सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं ये आलू टिक्की चाट फ्रॉम होको रेस्टोरेंट इन फ्रिस्को. स्टूडियो का नंबर नोट कर लीजिए 972-235-5555.
1: फ्रेंड्स, ये शक्ति कुमार का पहला YouTube वीडियो है और मैं इसे डेडिकेट करता हूं to the secret superstar jise maine break diya. Pesh hai mera naya gana, taza kal hi record hua hai, brand new. Enjoy.

कॉन्ग्रेचुलेशन यात्री, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये गाना फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार से लिया गया था।

मल्लिका सिंह के इस गाने के साथ हमारा खान स्पेशल अपने इख्तिताम को पहुंचता है. आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडे सेगमेंट एंड ऑफ कोर्स द शो दिल से. रिमेंबर आई बी बैक ऑन एयर टुमारो बिटवीन 3 and 6 PM राइट हियर ऑन 104.9 FM. दिस इज अमरीन हसनात साइनिंग ऑफ फॉर दिल से.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 33416, Division of Brazos National Bank.
6: Is Raksha Bandhan, Choctaw Casino and Resort Durant ke saath celebrate kijiye wo rishta jisme nok chok bhi hai, dosti bhi and a lifetime of unforgettable memories. Apne bhai ya behen ke saath judi sabse yaad memory hame 1 minute voice note mein bheji and win exciting daily prizes including dining experiences, entertainment, resort stays and the grand prize, an unforgettable sibling reunion weekend at Choctaw Casino and Resort Durant. Apni story WhatsApp kijiye 214-837-7147 par ya contest details ke liye visit kijiye Fun Asia Radio ke social media pages.
7: Choctaw Casino and Resort Durant, where unforgettable memories are made together. Must be 21 or older to participate. Terms and conditions apply. Please play responsibly.
8: कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
9: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
10: Pan Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
11: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
12: ये तारा वो तारा हर तारा।
13: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
14: अगर आप नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती हैं, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
15: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
16: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
15: नहीं।
16: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
15: नहीं।
16: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
15: वो भी नहीं।
16: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
17: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
18: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
19: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
20: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ.
21: Front page का तो पता नहीं, but तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है.
20: कैसे?
21: Page 3 eatery?
20: No, not another restaurant again.
21: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
20: मतलब great food, great drinks, and great company, yani ki main.
22: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
23: Sadia.
24: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है।
25: दीवारा तेरा।
26: वही आप
0: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
2: तुमसे मिलके दिल का है।
0: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

हाँ जी, आपका और फन एशिया का रिश्ता जरूर बहुत पुराना है, हम लोग दिल से जुड़े हुए लोग हैं ना। वेरी गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आरजे सिमी को ओनली ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम। और मेरा और आपका साथ लंबा होने वाला है, पूरे 9 बजे तक रहूंगी यानी कि 3 घंटे तक रहूंगी। तो बहुत सारा धमाल होने वाला है, धमाका होने वाला है, गेम्स होने वाले हैं इंटरेस्टिंग, और बहुत सारा इंटरटेनमेंट भी होने वाला है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, शुरू करते है आज का शो। और सबसे पहले आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है डिजिटल डिटॉक्स। लेकिन इसके बारे में मैं और बताऊं, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपके क्या अंडरस्टैंडिंग है, डिजिटल डिटॉक्स किसे कहते हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं 972-235-5555।

भाई देखिए, मैं चोरी चोरी नंगे पाव तो नहीं आई हूँ, मैं तो बकायदा पूरे माइक पे अनाउंस करके पूरे डैलस में सबको बता के आई हूँ कि हजरत हजरत हजरत आरजे सिम्मी आ चुकी है और आपके साथ रहेगी पूरे 9 बजे तक। तो तैयार हो जाइए और आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये 2 सॉन्ग्स के पहले बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल डिटॉक्स के बारे में, लेकिन उसके पहले कि मैं ज्यादा कुछ उस पर बोलूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बार कि व्हाट डू वी मीन बाय डिजिटल डिटॉक्स। इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए ना अपना फोन, सोशल मीडिया, लैपटॉप, नोटिफिकेशंस और डिजिटल दुनिया से ब्रेक लेना। और ऑनेस्टली सोचिए जरा, हमारी लाइफ में फोन कितना इंपॉर्टेंट हो गया है ना। सुबह आँख खुलती है तो फोन, रात को सोने से पहले फोन, खाना खा रहे अरे फोन किधर है, बाथरूम में भी फोन लेके जा रहे। कभी कभी लगता है कि फोन हमारी लाइफ का फैमिली मेंबर नहीं बल्कि फैमिली हेड ही बन गया है। और सबसे फनी बात बताऊं कि हम ना फोन अनलॉक करते हैं बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के। फोन अनलॉक किया, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह खोला, स्क्रॉल किया, 5 मिनट के बाद फोन लॉक, और फिर 30 सेकेंड्स के बाद अच्छा एक बार चेक कर लेता कुछ नया है क्या, कुछ न्यू है कुछ, क्या चल रहा है दुनिया में। और कभी कभी तो हम फोन उठाते हैं और लिटरली भूल जाते हैं कि भाई हमने फोन उठाया क्यों था। ये रिफ्लेक्स बन गया है आजकल हमारा, मैंने भी काफी नोटिस किया है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। कॉल कीजिए मुझे 9722355555।

आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स के बारे में। और कभी आपने नोटिस किया है कि आप ये कहते हैं कि you know, मैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ या थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ, और रिलैक्स करने के नाम पे हम क्या करते हैं? इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, नेटफ्लिक्स, टिकटॉक या फिर फेसबुक। मतलब ब्रेन को रेस्ट देने के नाम पे ब्रेन को और कंटेंट दिए जा रहे हैं हम। कभी नोटिस किया है कि 30 मिनट जो है हम रील देखते ही रह जाते हैं लगातार, और हम मेंटली फ्रेश फील ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो हमारा दिमाग जो है हमको तो लगातार काम कर ही रहा है, और बस लगता है कि यार एक और रील, और कैसे जो है वो आधे घंटे और एक घंटे में बदल जाता है पता भी नहीं चलता।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ अगस्त, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो।
7: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you, so call KJ Kamna Ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai, and number 926641.
8: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
9: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
8: सच में सब संभालेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
10: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: Floors clean.
12: Check.
11: Windows clean.
12: Check.
11: Kitchen clean.
12: Check.
11: Air ducts clean.
12: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
13: Bilkul, jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
2: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
13: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower or relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye. लकी बन जाइए। चौकटाल कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम।

भाई मजा तो आएगा ही। आप जो फन एशिया जो सुन रहे हैं और मैं हूँ आरजे सिमी, और ये जो लास्ट सॉन्ग था ना मेरे रश के कमर, वो डेडिकेटेड था हमारी स्वीट स्वीट मरियम को। आई होप यू लाइक दैट। और आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल डिटॉक्स। तो अभी तक तो मैंने बहुत सारी ऐसी बातें करी कि यू नो डिजिटल डिटॉक्स क्यों, मतलब क्यों जरूरी है, आप इतना ज्यादा फोन में इंग्रॉस्ड हैं एक्सेट्रा। लेकिन अब हम उस बारे में बात करें जो कि जरूरी है, कि अगर हम स्क्रीन टाइम अवॉइड करना चाहें तो कैसे करें और व्हाट शुड वी डू इंस्टेड। लाइक अगर हम फोन पे नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो फोन को जो है साइड में रख दीजिए। रख दिया हो जाएगा, पहले डिफिकल्ट लगता है लेकिन हो जाएगा। और आप एक बुक पढ़ सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ कुक कर सकते हैं स्पेशल अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, वर्कआउट कर सकते हैं, फैमिली के साथ लंबी बातें कर सकते हैं, कॉफी लेकर ना बस क्वाइटली भी बैठ सकते हो। अब ये ना बहुत सारे हमें ऐसा लगता है कि हमें ना कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन की आदत हो गई है कि हम लगातार कुछ ना कुछ करते रहें। जरूरी नहीं है, हम 5 मिनट ना क्वाइटली बैठना जो है भूल चुके हैं और हमें लगता है कि ये तो बड़ा अनकंफर्टेबल सा है। हाउ कैन वी बी सो अनप्रोडक्टिव इन लाइफ। लेकिन कभी ट्राई करके देखिए, फोन साइड में रखिए, विंडो के पास बैठ जाइए, बाहर की दुनिया देखिए, नो म्यूजिक, नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, बस साइलेंस। पहले 2 मिनट अजीब लगेगा, अलग लगेगा, लेकिन आपको उसके बाद रियलाइज होगा कि यार अपने साथ टाइम बिताना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना टाइम हो गया है ऐसा किए हुए।

देखो यार गाइस, आंखों से तो मैं भी कह दूं, लेकिन आपको माइक पे सुनाई देगा क्या? क्योंकि मैं तो रेडियो पे हूँ, 104.9 एफएम पे, आरजे सिमी। और आज का हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हुए मैं डिजिटल डिटॉक्स के बारे में बातें कर रही हूँ। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि भाई टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली छोड़ दो, अवॉइड कर दो। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को काफी ईजी बनाती है, लेकिन कभी कभी फोन को थोड़ा ब्रेक देना भी जरूरी है। हम हर नोटिफिकेशन का रिप्लाई एकदम फटाफट तुरंत कर देते हैं, लेकिन अपने माइंड की नोटिफिकेशन कभी चेक करते हैं क्या? तो आज थोड़ा स्लो डाउन करिए, फोन को थोड़ा अवॉइड कीजिए, अपने फेवरेट इंसान से बातें कीजिए, वॉक पे जाइए, म्यूजिक सुनिए और थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड कीजिए। क्योंकि लाइफ सिर्फ स्क्रीन पे नहीं हो रही, लाइफ तो स्क्रीन के बाहर भी, अगर आप देखो आपकी आंखों से जो नज़ारे देख रहे हैं वो भी काफी खूबसूरत है। और आई होप यू गाइज लाइक आज का टॉपिक।

तो फिर चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा गिव अवे राउंड शुरू होने वाला है, लेकिन पहले मैं ये तो बता दूं कि आपको इस गिव अवे में मिलेगा क्या। आपको मिलेगा फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। जी हाँ, फन पिज्जा किचन जो है उन्होंने लॉन्च किया है ब्रांड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप। और ये ना सिर्फ पिज्जा नहीं है, ये फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा है, चाहे वो फ्रेश फिएस्टा वेजी हो या फिर फेरी पोलो लोको या फिर सीड फूड पैक्ड सेनोर कैमरॉन या फिर लोडेड बंचो मैचो पोरकर। हर एक बाइट जो है ना यहाँ की, वो बोल्ड है, एक्साइटिंग है और इट इज मेड टू इम्प्रेस द वन हु इज टेस्टिंग इट। तो ये मौका तो नहीं गंवाना चाहिए, और स्पेशली जब मैं इतने आसान सवाल पूछती हूँ, तैयार हो जाइए। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको मैं एक वर्ड दूंगी और उस वर्ड से आपको 3 सॉन्ग्स बताने हैं मुझे कॉल करके। और प्लीज ख्याल रखिएगा, कई लोग ना ऐसे जल्दी जल्दी में कॉल कर देते हैं और एक गाने पे रुक जाते हैं। मुझे पूरे के पूरे 3 सॉन्ग्स चाहिए, और आज का जो वर्ड है वो है कैसे। आपको कैसे वर्ड से शुरू होता हुआ या फिर किसी सॉन्ग के फर्स्ट लाइन में आता हुआ 3 सॉन्ग के नाम मुझे बताने हैं। आई एम वेटिंग, और फोन का नंबर है 9722355555।

0: हमने पूछा था आपसे एक सवाल कि कैसे वर्ड से शुरू होता हुआ जो है आपको तीन सॉन्ग का नाम बताना था, और हमारे साथ फोन लाइन पे हैं अर्पित। हाय अर्पित। हेलो
1: यस हेलो
0: हेलो
1: आई एम हियर।
0: अर्पित। हेलो, या कैन यू हियर मी?
1: यस आई कैन।
0: ओके, तो आप जो है ये बताइए कि कैसे वर्ड से कौन कौन से तीन सॉन्ग्स आपको पता है, याद आ रहे हैं?
1: हाँ जी, पहला तो कैसे मैं कहूँ, गा के तो नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ।
0: ठीक है ठीक है।
1: वैसे ही वैसे वो ऐसे है, कैसे मैं कहूँ तुझसे
0: हाँ जी,
1: रहना है तेरे दिल में, नंबर
0: वाह,
1: वन।
0: ओके,
1: नंबर टू फ्रॉम अजब प्रेम की गजब कहानी,
0: हाँ,
1: कैसे बताऊं क्यों तुझको चाहूं,
0: वेरी
1: वैसा
0: गुड,
1: करके गाना।
0: ओके,
1: और तीसरा है कैसा तेरा प्यार है।
0: वेरी गुड अर्पित, आप है हमारे आज के लकी विनर। आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और अभी अमेजिंग सॉन्ग्स का सिलसिला जारी रखते हुए अपने लिसनर्स के लिए हम कैसे वर्ड से शुरू होता हुआ गाना बजा रहे हैं। थैंक यू अर्पित वंस अगेन।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू, लवली इवनिंग, थैंक यू गाइज।
0: ओके।